0: रहे हैं वो ये हालात इसी तरह होंगे।
1: अच्छा रजा साहब, ये एक इंसानी फितरत है ना कि इंसान के पास जब इख्तियार होता है, पैसा होता है और उसके साथ साथ मतलब है अपने इर्द गिर्द का जो इलाका होता है वो थोड़ा सा मुतवस्सत होता है, तो वो एक इंसानी फितरत ऐसी है कि वो अपने आप को ना नुमाया करने की कोशिश करता है, और इस तरह की हरकत व सकनात की वजह से बाकी के लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहते हैं, जेलस भी होते हैं, और लाजमी बात है कि उनकी कोशिश होती है कि इनसे किसी ना किसी तरह या पैसे निकलवाएं या इनसे कोई ना कोई बड़ा काम लें। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये तो है एक हदीस या कहा भी यही जाता है कि अगर आप खुशहाल हैं तो आप कोशिश करें कि आपके जो सराउंडिंग है, आप इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर आपको इतना कुछ दिया हुआ है तो आप पर ये फ़र्ज़ बन जाता है, ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आप दूसरों का भी ख्याल करें, और सबसे पहले ज़ाहिर है अव्वल खेश बाद दरवेश, अपने फैमिली का, उसके बाद दोस्तों का या बाकी दुनिया का। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इस पर काबू अगर इंसान पा लेना तो वो ज़ाहिर है मोमन की मिराज तक पहुँच जाता है। मोमन ऐसे मोमनियत ऐसे तो नहीं कहा जाता किसी को, ये मोमन है उसमें हर तरह की वो ज़माने के हिसाब से वली भी होता है मोमन जो, क्योंकि वो ज़माने के हिसाब से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता है और ज़माने के हिसाब से वो देखता है कि लोगों का क्या है, लेकिन इस पे काबू पाना ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे समेत मैं ये कह रहा हूँ। हम खुद भी जब ज़ाहिर जाते हैं साफ रहना एक अलहदा बात है, लेकिन जैसा आपने फरमाया कि कलफ वाला सूट, गाड़ी, मोबाइल हाथ में, और फिर उसके बाद अखराजात जिस तरह करना लोगों के सामने, तो डेफिनेटली दूसरे लोग जो जब देखते हैं तो वो तो जेलस होते हैं।
0: जफर भाई, मुझे इतना पता है कि जिस इलाके से मेरा तल्लक है ना, खरिया का, जो वहाँ के गिर्दो पेश के जो गांव हैं, यकीन करें वहाँ पे ऐसी ऐसी कोठी आपको मिलेगी जो शायद आपको ना इस्लामाबाद, लाहौर या बड़े बड़े शहरों में भी मिलती है।
1: ऐसे
0: तो वहाँ पे अगर मेरे साथ कोई टाट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो मैं वहाँ पे नालायक था, यहाँ पे आके मैंने मेहनत की, और यकीन करें यहाँ पे जो लोग हम काम करते हैं ना, ये आप हमसे ही पूछ लें कि हमारे जो काम कैसे होते हैं, सफाइयों के काम हम करते हैं, वो चाहे डिश वॉशिंग हो, बाथरूम, जो जुम्मेदार जिनको हम पास से नहीं गुजरने देते, वो काम हम यहाँ पे करते हैं, वहाँ पे जाके हम चौधरी बने होते हैं। तो वो जो साथ वाले होते हैं ना, वो कहते हैं यार जे तू बन सकता है ना, जे तू एनजीओ हो सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेशक मैं उनको समझाऊ ना कि यार वहाँ पे मैं टेंटे भी साफ करता हूँ तो डिश वॉशिंग भी करता हूँ, तो वो कहते हैं चल यार असी भी कर लेंगे अगर हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो अगर इस तरह का जो है वो बदली हो सके। खैर जफर शेख साहब, ये तो थी थोड़ी सी मियां सईद साहब ने जो कमेंट्स किया था ना उस पर उसके हवाले से। तो सामिन, अगर आप भी कोई बात करना चाहते हो तो टेलीफोन नंबर है 3321-2984-3321-2984। तो आज जो है ना बिल्कुल आप जफर शेख साहब के कंधे जो है ना वो बड़े चौड़े हैं, तो सर रख के बेशक जितना भी रोना है ना आप आज खुल के रो लें। अच्छा घंटा है रोने के लिए।
1: अच्छा ये सिलसिला हम इंशाल्लाह इसको रेगुलर भी करेंगे मदर नाजरीन, इसलिए भी कि मेहमान जो भी स्टूडियो में होता है ज़ाहिर है उसके साथ हम उसके प्रोफेशन के मुताबिक बातचीत करते हैं, चाहे वो सियासी या समाजी या सकाफती या कोई भी है बिजनेस के हवाले से, लेकिन हम ये चाहेंगे कि रेडियो हम वतन और नई दुनिया के प्लेटफॉर्म से जो भी प्रोग्राम होते हैं, ये इनकी नशरियात पूरी दुनिया में अभी फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए आप तक पहुंचती हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप अगर बाज़फ़ा होता है ना, ज़्यादा लोग हमारे ये होते हैं कि कैमरे के सामने वो शाही होते हैं, यानी थोड़ा सा झिझकते हैं, तो उनके लिए ये हम ये चाह रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म हाज़र है, और जो नंबर रजा साहब रिपीट कर रहे हैं गाय बगाए उस पर आप फ़ोन करके अपने कोई भी बात, ये नहीं कि कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि वो इनफरादी तौर पर या इजमाही तौर पर हम सब के लिए फ़ायदा मंद है, और उसको शेयर करें, इससे अल्लाह ताला भी ज़ाहिर है खुश होता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, और अच्छी बात उसको दूसरों तक फैलाने से ज़ाहिर दूसरों का भी भला होता है। तो बहरहाल रजा साहब, एक तो बात ये होगी कि हम अपने तौर पर उस तरह वो साबित कदम नहीं है कि हम जब पाकिस्तान जाते हैं, यहाँ भी अगर बाहर जाएं तो हम अपने आप को मतलब ज़ाहिर करते हैं, गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए या जो भी सिलसिला, लेकिन इसके पीछे वो एक फैक्टर ये भी होता है अखलाकियात का। اخلاقیات ایک ایسی چیز ہے ہماری زندگیوں میں کہ اگر

0: इसको हम अच्छे तरीके से फॉलो करें, मुस्बत तरीके से फॉलो करें ना, उसमें अखलाकियात में वादा करना भी, वादा वफा करना भी, वादा खिलाफी करना, ज़ाहिर है वो तो फिर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त 2026 तक दुनिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, और इसमें ये आप उज़र या रीज़न नहीं दे सकते कि मैं आपके टेलीफोन का जवाब नहीं दे सका, मैंने आपसे जो वादा किया था उसको मैं निभा नहीं सका, या उसकी उसको निभाने की कोई रीज़न जो सॉलिड है वो नहीं बता सका। तो इस तरह फिर थोड़ा सा बंदा मायूस सा होता है कि यार इस 2026 में भी हमारे लोग इस तरह करते हैं, और होता है इस तरह।
1: अच्छा जफर शेख साहब, ये जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना कि ये हमारे अगर हमने किसी से कमिटमेंट की है,
0: जी जी,
1: चाहे टाइम की हो या किसी और चीज
0: काम की जी,
1: तो क्या वजह है कि हम जो है वो इतनी इखलाकी जुरत नहीं रखते कि चले मैंने आपसे एक टाइम ले लिया है जफर साहब, मैं आपके शो में आऊंगा या आपके घर पे आऊंगा या जो भी है, तो अगर मेरी कोई मजबूरी बन गई है तो क्या मैं फोन उठा के या आपको मैसेज कर दूं या आपको फोन करके बता दूं कि जफर शेख साहब मैं माजरत ख्वाह हूं कि आप अपना वक्त बर्बाद ना कीजिएगा, मेरा इंतजार ना करें, मैं आज जो है या कल नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरी ये मजबूरी हो गई है। तो ये क्या वजह है कि हमारी इखलाकियात जो है, ख़ासतौर पे हमारे जो यहाँ पे प्रोग्राम भी होते हैं, यहाँ पे हों या यूरोप के किसी मुल्क में या पाकिस्तान में हो, टाइम पे कभी नहीं शुरू हुए, ये क्या वजह है कि हमने जो है, और हमारा दीन तो नमाज में सिखाता ही वक्त की पाबंदी है कि देखें जी फजर की नमाज का टाइम है, आपने उस वक्त पढ़नी है, जोर का है, असर का, यानी उस टाइम के बाद वो आप नमाज पढ़ नहीं सकते, हाँ कजा करके पढ़ सकते हैं। तो क्या वजह है कि हमने हम नमाजें तो पढ़ते हैं, हमारे माथे पे मेहराब भी होते हैं, लेकिन जो है वक्त की पाबंदी जो है या वो इखलाकियात वो चीज़ हमें जो है वो नहीं बेदार होती।
0: दो चीज़ें मेरे तजर्बे से गुजरी हैं, उसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर सकता हूँ, क्योंकि एक वक्त होता है, एक उम्र का हिस्सा होता है, बंदा उस वक्त थोड़ा केयरलेस होता है, नहीं केयर करता, लेकिन जब हम उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं, या ये भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो यहाँ लोग अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, तो वो अपनी अखलाकी या माशरती ज़िम्मेदारियों को क्यों नहीं निभा सकते। इसके पीछे यही है, एक तो केयरलेस होता है बंदा, और दूसरा उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं अभी इसको जवाब कैसे दूं, कि अगर मैंने वादा किया है इस काम का, जैसे आपने मुझे कोई काम कहा है तो मैंने मेरे अंदर अखलाकी जुरत है तो मैं आपको बताऊं कि यार ये एक वजह बन चुकी है जिसकी वजह से मैं ये काम आपका नहीं कर सकता या मैं टाइम पर नहीं पहुँच सकता। ये दो चीज़ें जो है ना काउंट करती हैं, लेकिन इसके पीछे वो एक जो होता है ना एतमाद का रिश्ता, वो ख़राब हो जाता है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। माली नुकसान तो बंदा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अखलाकी या ये जो इस तरह का एतमाद बंदे को ठेस पहुंचती है ना, वो नुकसान होता है बड़ा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये, और दूसरा जो टाइमिंग का आपने बताया उसका यही वजह है कि ये आप देख लें कि एक प्रोग्राम हो रहा है और उसमें हर बंदा इनफरादी तौर पर ये सोचेगा चलो यार खैर बाकी बंदे पहुँच जाएंगे, मैं भी पहुँच जाता हूँ, उसमें वही आती है बात कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी क्यों ना पूरी करूं, कि मैं अगर मेरा टाइम उतने बजे शुरू होना है तो मुझे स्केल उधर मस्त पहुंचना चाहिए। तो ये इनफरादी तौर पर अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को इस तरह का महसूस करेंगे तो फिर ये सारे लोग इज्तमाही तौर पर पूरी करेंगे।
1: मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, मैं ना ये जब मुख्तलिफ प्रोग्राम होते थे लोग बुलाते थे
0: जी,
1: तो जब वो प्रोग्राम टाइम पे नहीं शुरू होता था तो मैं ना अक्सर उन लोगों को जाके ना कहता था कि यार आप शुरू कर दें यार, अब टाइम दिया हुआ, आप उन लोगों को क्यों सजा देते हैं जो लोग टाइम पे पहुंचते हैं। अच्छा फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने वो जब बुलाते थे मुझे कहते रजा टाइम 5 का, तू 6 बजे आए, ठीक है, कि हमने 6 से पहले प्रोग्राम शुरू नहीं कर रहा, वो पहले बता देते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा पता चल गया था कि यार ये बंदा जो है ना ये हमेशा सवाल करता है, तो उन्होंने टाइम ही उसी तरह का मुझे देना, लोगों को 5 का मुझे 6 का, लेकिन उसमें भी मुझे बुरा लगता है कि यार 6 का अगर मैं 6 बजे आ रहा हूँ तो लोगों को तो नहीं पता कि इंतजामिया ने मुझे कहा कि तुम 6 बजे आना,
0: ठीक है,
1: लेकिन जफर भाई अगर मैं मिसाल के तौर पे आपने 5 का टाइम दिया है, मैं 6 बजे आ रहा हूँ, आपने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया है, ठीक है, तो उसमें नुकसान तो मेरा है क्योंकि मैं जो पहले घंटे में जो प्रोग्राम हुआ वो मैंने मिस कर दिया है, ठीक है, तो लेकिन इंतजामिया जो है जो प्रोग्राम करते हैं उनका काम है कि चलें मैं कहता हूँ कि 5-10 मिनट लेट होना इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको जो है ना आप मामूली कह सकते हैं, लेकिन आधा आधा पौना पौना घंटा दो दो घंटे लेट प्रोग्राम शुरू करना, ये कहीं का जो है ना वो इंसाफ नहीं है उन लोगों के साथ जो लोग टाइम पे आते हैं।
0: ज़ाहिर ये ऐसे ही है ना, बात तो वही है कि इंफरादी तौर पर अगर ये महसूस करे ना बंदा, कोई भी, चाहे वो ऑर्गेनाइज़र है, चाहे वो पार्टिसिपेंट है, या चाहे वे कोई भी बंदा है, वो अगर इंफरादी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करेगा तो तब जाकर ये इस पर हम काबू पा सकेंगे, पाबंदी हो सकेगी। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि हमारी तो रिक्वेस्ट ये है, हमारे समेत हम खुद भी कोशिश करते हैं और करेंगे भी कि हम अपने टाइम की पाबंदी किया करें, और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ आप अगर टाइम जो प्रोग्राम का लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप उसको अटेंड किया करें।
1: अच्छा वैसे अच्छा, जफर शेख साहब जी, आप अगली बात करने से पहले ना माजरत आपको टोक दिया, कुछ थोड़ा सा कोई कलाम, कोई गीत, कोई नगमा, कोई गुनगुना के सुनाएं ताकि कोई माहौल को हम भी थोड़ा सा चेंज करें, अगर आपका मूड हो तो।
0: मैं असल में, मुझे ये जो थोड़ा सा ना ये पोलन एलर्जी की वजह से ना मेरा आवाज़ एक तो नॉर्मल भी नहीं है, थोड़ा सा वो है, लेकिन मैं हसबे मोल ये वैसे तो मैं नहीं ये इस तरह कहता कि मैं, जिस तरह लोग यानी फनकार जो होते हैं वो पहले नखरे करते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है,
1: किसी नखरे नहीं करते,
0: ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं अभी मैं देखता हूँ अगर
1: चले जमीन जितनी देर तक
0: जी जी जी करें बात आप।
1: मैं ये कहने लगा जितनी देर से जफर साहब जो है ना कोई ढूंढते हैं ना हमें सुनाने के लिए, बस खरी खरी ना सुनाए बाकी खैर तो आप जो है ना टेलीफोन नंबर नोट कर लें 3321298433219184, इस नंबर पे आप फ़ोन करके हमसे जो है ना कोई भी बात करना चाहें आप कर सकते हैं। जफर शेख साहब ना आज बिल्कुल हर बात सुनने के मूड में।
0: अच्छा जी चलें, वो बात याद आ गई, आमू की बात शुरू हुई। अच्छा ये ज़रा बताएं हमारे देखने और सुनने वालों को कि ये समर जो प्रोग्राम हो रहे हैं और उसमें ख़ास तौर पे हमारी ये सौगात आम, मैंने भी कुछ प्रोग्राम अटेंड किए हैं, और उसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो बाकी दुकानों पे या मार्केट्स में आम अवेलेबल होते हैं वहाँ ये सस्ते दामों में मिलते हैं? पता नहीं, मुझे तो महसूस नहीं हुआ कि
1: कीमत प्राइस जो है ना वो तकरीबन वही है।
0: अच्छा
1: उसमें इतना फर्क कोई 5-7 करोड़ 10 का फर्क होगा, बाकी अच्छा उसमें नहीं है। लेकिन जफर साहब हमारा जो है ना एक और बड़ा इशू है ना कि अगर आपने एक काम शुरू किया ना तो वो मैंने भी वही काम करना है, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, पांच ने भी। अभी आप देखें कि पहले ये एक ने आम का जो है वो शुरू किया था मेला, ठीक है, फिर उसके बाद अब जो है वो कितने हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अच्छा है जो है ना लोगों को बाहर निकलने का मौका मिलता है, कोई हल्ला गुल्ला होता है, कोई म्यूजिक लग रहा है, कोई बातें, यानी किसी को आप मिल लेते हैं जिनको काफी अरसे से नहीं मिले, लेकिन उसको कोई और आप नाम दे लें, कोई और सौगात ले लें, कोई और उसमें, पहले यहाँ पे वो मीना बाजार लगते थे तो सभी जो है ना वो मीना बाजार ही कर रहे होते थे
0: जी।
1: तो ये कि एक ही चीज पे ट्रेंड बना के उसी पे चलते रहना, थोड़ा सा अपनी सोच को वसी करें, कोई और सोचें, कोई और अच्छा, काम करें।
0: होता तो या होना तो ये चाहिए कि जिस तरह यहाँ कोई सेल वगैरह लगती है ना मार्केट्स में, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल रोजमर्रा खाने पीने की या कपड़े जूतों की जो सेल होती है उसमें फ़र्क होता है कीमतों में। अच्छा ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जिन प्रोग्राम्स में मैं गया हूँ, चाहे वो खाने पीने के स्टॉल हैं या कपड़े जूते वगैरह जो हैं, जो भी हैं, आम तो चलो हैं ही उसी कीमत पे जैसा आपने बताया और ये होता है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि खाने पीने की चीज़ों में थोड़ी बहुत डिस्काउंट होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि जो स्टॉल जो ख़रीदते हैं उनके भी पैसे ज़ाहिर वो देते हैं होते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के प्रोग्राम में ये जो चीज़ें बिकने खाने पीने वाली होती हैं उसमें डेफिनेटली डिफरेंस होना चाहिए कीमतों में। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर सुन रहे हैं, 3 प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं, अभी 2-3 प्रोग्राम और आ रहे हैं और कोशिश करूंगा मैं उनको भी करूंगा अटेंड, और उसमें भी जाहिर है हमारी ये आमों की सौगात ये तो होगी डेफिनेटली, लेकिन बाकी जो चीज़ें खाने पीने की हैं वो काफ़ी महंगे दामों में फरोख्त होती हैं, इसके पीछे शायद वही वजह है कि वो स्टॉल उनको महंगे मिलते हैं।
1: एक तो जफर भाई अगर आप देखें तो कीमतें काफ़ी जो है वो बढ़ गई हैं, लेकिन दूसरा आपने खुद ही कहा कि जब आप स्टॉल लेते हैं फिर उसके भी पैसे, फिर आपने वो खाना बना के वो भी लेके आना है, आपने स्टाफ को भी तनख्वाह भी देनी है, तो अखराजात तो खैर उसमें हैं, लेकिन ये भी है कि आप जो है अपना मुनाफा जायज रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लें और आपका वो सारा सामान जो है वो बिक जाए बजाय इसके कि आपको जो है वो फेंकना पड़े।
0: ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन चलें, ये जाहिर है इसी तरह ही है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि ये इन प्रोग्रामों की वजह से तमाम फैमिलीज वाले अपने बच्चों के साथ वहाँ इंजॉय करने जाते हैं और एक दूसरे के साथ डेफिनेटली मिलते भी हैं और उनको पता भी चलता है। और सबसे ये अच्छी बात ये है कि वहाँ तारकिन वतन भी होते हैं और डैनिश लोग भी होते हैं और वो भी ज़ाहिर है वो देखते हैं कि ये इनकी ये फल है जो पाकिस्तान से आता है तो वो उसको भी इंजॉय करते हैं खा पी के। तो ये एक अच्छी बात है वैसे इकट्ठा करने की लोगों को, तो ये चलना चाहिए इसी तरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात आती है फिर अम्बेसी के हवाले से, अगर हम बात करना चाहें तो इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए इस तरह के, कोई एक इत्तेफाई तौर पर एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करें जहाँ ये ज़ाहिर आम भी हों और बाकी चीज़ें भी हमारे कल्चर के हवाले से हों। तो ये मैं समझता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है और ख्वाहिश भी है।
1: ये आपकी रिक्वेस्ट वो पूरी कर देते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं साथ में लिखा होता है अम्बेसी की के तावन के साथ।
0: जी अच्छा जी। वो तो
1: ये आपकी ख्वाहिश पहले ही पूरी,
0: लेकिन नहीं, लेकिन ये कि इंडिपेंडेंट हो ना।
1: अच्छा,
0: अगर तावन इस तरह का चले, अगर लोग करवा लेते हैं अम्बेसी से, लेकिन मैं समझता हूँ कि टोटल इंडिपेंडेंट अम्बेसी अगर ये अरेंज करें ना इस तरह का प्रोग्राम, तो एक तो लोगों के दिल में भी ज़्यादा मतलब है फैसिनेशन होगी कि ये यार ये हमारी अम्बेसी कर रही है इस तरह का प्रोग्राम हमारे कल्चर के हवाले से।
1: अम्बेसी करती है अब मुख्तलिफ जगह पे, देखा मैंने हॉल्स में, अगर जब कोई इंटरनेशनल कोई इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे दूसरे ममालिक ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं वहाँ पे पाकिस्तान अम्बेसी लगाती है, देखे मैंने उनकी फेसबुक पे।
0: अच्छा,
1: इस तरह के
0: लेकिन उसमें हमारी एंट्री कम होती है ना हमारे लोगों की, तारकिन वतन
1: क्योंकि हमें बताया नहीं जाता ना।
0: अच्छा,
1: हमें यानी कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को, वो उनके फेसबुक पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको पोस्टर नहीं मिलेंगे।
0: अच्छा,
1: कि हमने वहाँ पे जो है वो लगाया, आप जो दर जो कहें।
0: लेकिन चलें, हमारी ख्वाहिश तो है कि इस तरह हो, तो इससे ज़्यादा हमांगी पैदा
1: किस तरह कहते हैं कि हर ख्वाहिश ऐसी कि उस पर
0: दम निकले, हर ख्वाहिश पे दम निकले। कुछ मेरे ऐसे अरमान थे जो काम निकले, शेर व शायरी असल में आती नहीं है हमें।
1: इसी बात से मैं भी माफ़रत कर लेता हूँ।
0: जी जी बहरहाल। अच्छा, इसके अलावा मौसम अच्छा है, अभी कल परसों से कुछ बारिश भी हो जाती है और हवाएं भी चल रही हैं, बल्कि काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो इससे भी लोगों का बाहर अभी आना जाना ज़रा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद प्रोग्राम में तो लोग जाते हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप बाहर जाते हैं? मैं तो जाता हूँ तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि जनाब कोशिश करें आप रेडियो हम वतन और नई दुनिया के प्लेटफॉर्म से एंटरटेनमेंट के हवाले से प्रोग्राम करें, म्यूज़िक के हवाले से, सकाफत के हवाले से। फिर मैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यार अगर आपके जहन में, आपके दिल में कोई ऐसी बात है इस हवाले से, तो आप हमारे स्टूडियो में आएँ और हमारे साथ वो बातें शेयर करें और हमें मशवरे दें टेलीफोन कॉल के लिए, ताकि हम उस हिसाब से उसके मुताबिक, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम चल रहा होता है उसमें जो नाजरीन होते हैं या कारीन होते हैं उनको अमल दखल ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए जो हम प्रोग्राम करते हैं। अभी जैसा मियां ज़हीर साहब भी फरमा रहे थे कि छुट्टियां तो हैं हमें, लेकिन हम फिर भी यहाँ टाइम दे रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारी अपनी ख्वाहिश भी है कुछ परसेंट, लेकिन ज़ाहिर कुछ परसेंट आप लोगों की ख्वाहिश हमारे सुनने और देखने वाले।
1: मियां ज़हीर साहब ना आज मूड में है मेरे ख्याल में, उन्होंने अभी आपने उनका जिक्र किया ना तो उनके साथ ही मैसेज आ गया, कहते हैं हम वैसी प्रोग्राम करती है पर चोरी चोरी।
0: चलें, बहरहाल ये है कि अगर जिस तरह का भी वो करते हैं उनका पता तो चल जाता है, लेकिन थोड़ा सा अफसोस होता है कि यही प्रोग्राम अगर सारी कम्युनिटी के साथ, चलो सारी तो ना, लेकिन कुछ हद तक कुछ पर्सनल कम्युनिटी हो या किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां सारे लोग हमारे जा सकें, तो फिर मैं समझ उससे ज़्यादा।
1: जफर भाई, मेरी जो ख्वाहिश है ना, और ये इंशाल्लाह से तो ज़िंदगी रही तो कि इंशाल्लाह ये पूरी करेंगे, मेरी ख्वाहिश है कि हमारी कोई एक ऐसी तंजीम हो जो यहाँ पे सारे जो जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है, उन सबको इकट्ठा करने में,
0: ठीक है,
1: उसमें कोई यानी कौन से सूबे से हैं, कौन से मज़हब से हैं, कौन सी बरादरी से हैं, यानी इन सब चीज़ों को हटा के एक ऐसी तंजीम हो जिसमें आपके ये सकाफती प्रोग्राम भी हों, जिस तरह हमारे ये 14 अगस्त आ गया, 23 मार्च आ गया, इलामा इकबाल डे, कायदे आज़म डे, ठीक है, उसके अलावा आपके जो हैं वो और दो चार प्रोग्राम हैं वो हो, उसके अलावा बच्चों के लिए उर्दू ज़बान का जो है वो कोई इस तरह का हो जिसमें वो आके, जिस तरह जब हम बच्चे थे ना यहाँ पे ज़फ़र साहब, तो यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम होते थे जहाँ पे हमें तलावत, नात, नगमा, तकरीरें करने का जो है ना वो मौका मिलता था।
0: अच्छा।
1: हमारे वो जो, और उस चीज़ से जो जो मेरी जनरेशन है यहाँ पे वो मुझसे एग्री करेंगे कि उसने हमें ये स्टेज पे खड़े होने का जो है ना वो कॉन्फिडेंस दिया था। हमारे माँ बाप हमें तैयारी करवाते थे, हमारे साथ हमें तैयारी करवाते थे कि आपने स्टेज पे जाना है, आपने बोलना है। और यकीन करें स्टेज पे खड़ा होना इतना कोई आसान काम नहीं है, बड़े बड़े लोगों की जो है ना वो टांगें कांप जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इस तरह के प्रोग्राम हों बच्चों के लिए हों, बड़ों के लिए हों, अगर कोई पाकिस्तान से कोई मेहमान आ गया, कोई शायर आ गया, और ऐसा हो कि यानी उसकी कोई टिकट ना हो, यानी वो तंजीम में इतने पैसे हों कि वो लोगों के लिए जो है वो उसको फ्री एंजॉयमेंट के लिए प्रोग्राम जो है वो रखें। और हर शो, हर फंक्शन में कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर रोटियाँ भी हों। ये हमने एक बड़ा अजीब सा जो है वो डिनर साथ में जो है ना वो रख लिया है, हर चीज़ के साथ डिनर, तो ये रोटियों से जो है ना थोड़ा सा हटके जो है हमें तो सोचना पड़ेगा।
0: अच्छा, ये आपने बात की खाने पीने की, तो ये एक मेरी ज़ाती राय है वो यही कि जिस तरह बाकी ये कम्युनिटी के लोग या डैनिश लोग या जिस तरह भी कोई अगर प्रोग्राम होता है तो उसमें अगर खाना अगर बंदा खुद अपनी फैमिली के साथ अगर पार्टिसिपेट करता है तो ले जाए तो वो वहाँ अपने आप को खुद मतलब सर्व कर सकता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि बजाय इसके कि अगर वो खाना रखते हैं तो उसके लिए वो एंट्री फ़ीस रखते हैं तो वो ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा मुश्किल होती है या ज़्यादा होती है। एक प्रोग्राम मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं लेकिन मैंने सुना है कि ये कोई शायरी का प्रोग्राम को पाकिस्तान से शायरा थी या शायर थे, मुझे अभी नहीं सही इसका पता, लेकिन मैंने ये सुना है कि वहाँ भी एंट्री थी 250 करोन या कितना पता नहीं, तो वो प्रोग्राम है। और यही मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ जो लोकल मीडिया है वो डजंट मैटर, वो रेडियो आम वतन पे आए या ना आए, यहाँ लोकल मीडिया जितना भी है वहाँ किसी भी मीडिया पे आके थोड़ा सा प्रचार करें किसी भी प्रोग्राम का ताकि लोगों को पता चले, तो उससे लोग ज़ाहिर है लाजमी बात है जो दिलचस्पी रखते हैं शायरी से या अदबी लोग हैं वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये हैरानगी जब हम बाहर बाद में देखते हैं ना वो सोशल मीडिया पे तस्वीरों की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में ये प्रोग्राम हुआ है तो थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार ये क्यों इस तरह होता है।
1: जैसा भाई, एक तो हम लोग खुद समझते हैं कि अब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ना तो मेरी उम्मीद और तवक्को ये है कि पूरे डेनमार्क में जितने भी 35-37-40 हज़ार पाकिस्तानी रह रहे हैं ना सब ने तक है, ठीक है। और इसी तरह जब मैं कुछ पोस्ट लिखता हूँ ना फेसबुक पे तो मैं समझता हूँ कि सारे पूरे डेनमार्क ने देख ली। इस तरह होता नहीं है, हर चीज़ आपकी नज़र से नहीं गुजरती, वो आप कितने भी जाने पहचाने हों या कितने भी आपके फॉलोअर्स हों, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की नज़र से वो चीज़ गुजरती है। तो ये आपने दुरुस्त कहा कि ज़फ़र भाई, मुझे याद है जब शुरू में जब ये इंटरनेट का दौर नहीं था तो जब कोई प्रोग्राम होते थे ना तो यहाँ मेन गेट के सामने एक पोस्ट बॉक्स लगा होता था जहाँ पे हमने कहा हुआ था कि इतवार से पहले वहाँ पे आप फेंक दें जो भी आप अपना पंपलेट या आपने लान करवाना है, तो वो जनाब वो उस पोस्ट बॉक्स में होता था। हम सुबह जब आते थे खोलते थे उसको तो देखते थे तो वो ऐलानात जो है वो पढ़ के लोगों को सुना देते थे कि जी फलां तारीख को फलां प्रोग्राम हो रहा है, फलां को ये हो रहा है, फलां को वो हो रहा है। तो ये ट्रेंड जो है अब तो वो भी नहीं, आपको आना भी नहीं पड़ता, अब तो सिर्फ आप SMS करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, यानी इतनी सहूलियात हो गई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बेसिक हमारा है ना, हमारी जो सोच है वो ये है कि मीडिया की अहमियत क्या है, ठीक है। हम उसको अहमियत नहीं देते या समझते कि एक मीडिया जब उस पर बात आती है तो वही बात जो है वो कितने लोग जो है वो सुनते और करते हैं।
0: जी। अच्छा, मीडिया के हवाले से आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये ज़ाहिर है मीडिया की अहमियत इस वजह से भी कम होती जा रही है कि अभी सोशल मीडिया पावरफुल है इस वक्त पूरी दुनिया में, और हर बंदे के पास जिसके पास एंड्राइड या आईफोन है या कोई भी नेट वाला टेलीफोन है तो वो ज़ाहिर है उसके पास वो सारा इंफॉर्मेशन है पूरी दुनिया की, और वो जो कुछ भी करना चाहे उस मोबाइल के ज़रिए फ़ोन के ज़रिए वो अपने आप को फैला सकता है। लेकिन बात फिर जो क्रेडिबल जो ज़ाहिर है जो चीज़ होती है वो तो लाजमी बात है, जैसे हमारा रेडियो हम वतन है, रजिस्टर्ड है रेडियो वेस्ट्रो वो के साथ, और इससे जो भी बात अगर होती है या जैसा आपने फरमाया भी कि ज़रूरी नहीं कि इतना हमारा प्रोग्राम वायरल भी हो, लेकिन किसी हद तक जब वो फेसबुक पे लाइव जाता है या बाकी ग्रुप्स की वजह से लाइव जाता है तो लाजमी बात है ग्रुप्स में हज़ारों के हिसाब से लोग शामिल होते हैं मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ, तो इस तरह ज़्यादा वायरल हो जाता है। इस वजह से वो जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मकामी, उसकी अहमियत ज़रा कम हो जाती है, लेकिन फिर भी जहाँ जो लोकल मीडिया है हमारे जितने भी रेडियोज़ चला रहे हैं टी वी भी साथ चला रहे हैं तो लाजमी बात है उन पे अगर कोई बंदा आता है अपनी बात करता है दिल की या कोई प्रोग्राम के हवाले से तो वो पेटेंट होती है मुस्तनद होती है, लोग उनको उसको समझते हैं कि वाकई ये है इस तरह होना चाहिए। लेकिन ये कह लें कि इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
1: अच्छा, ये मियां साहब ने एक और मैसेज भेजा, कहते हैं रेडियो हम वतन का फूल और कलियां बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था और ये बच्चों का प्रोग्राम था फूल और कलियां
0: जी,
1: जिसमें जफर भाई बच्चे जो है ना वो हम खुद उसमें फ़ोन किया करते थे और टेलीफोन लाइन बिजी होती थी, लोग नाराज़ भी होते थे, घंटे का प्रोग्राम होता था और 20-20, 30-30 बच्चे जो हैं वो उसमें फ़ोन करके कोई कोई पहेली सुना रहा है, कोई नगमा सुना रहा है, कोई सिर्फ अस्सलाम वालेकुम करके आगे से शर्मा गया, बोला ही नहीं है।
0: जी ऐसे ही। अच्छा, इसके लिए रजा साहब ये दोबारा हम सिलसिला शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़ाहिर ज़िम्मेदारी जो होती है वालदैन की है। अगर उनकी फैमिली में बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो कोई भी मतलब बात शेयर करना चाहें अपने हम असर बच्चों के साथ या लोगों के साथ तो वो कर सकते हैं। इसके लिए जैसा कि रजा साहब फ़ोन बताते हैं रेडियो हम वतन का, तो उस पर आप रब्ता करके तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और वो सिलसिला मैं समझता हूँ कि चलो मेरे आने से तो पहले था, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर वो सिलसिला दोबारा शुरू हम करना चाहें उसके लिए हम मुकम्मल तौर पर रेडियो हम वतन की पूरी टीम और हम लोग तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए वही बात कि अगर वालदैन उनके घर में कोई एक आध बच्चा दो बच्चे चाहे जितनी भी उम्र के हैं ज़ाहिर है टीन एज से कम जो हैं तो वो अगर हमारे साथ रब्ता करें तो उनके साथ हम प्रोग्राम कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ आ जाएं या टेलीफोन कॉल के भी जरिए हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ लोगों में दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ती है, तो ये मैं समझता हूँ कि सिलसिला मेरी ख्वाहिश तो ये है कि ये भी एक सिलसिला शुरू होना चाहिए। चलें, जिस तरह यहाँ सियासत के वाले से या इंटरनेशनल सियासत के वाले से या सकाफत के वाले से प्रोग्राम होता है तो एक बच्चों के हवाले से भी अगर एक सेगमेंट हम रख लें ना तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा।
1: बिल्कुल जफर भाई, देखें करने को इंसान हर काम कर सकता है लेकिन उसके साथ थोड़ी सी जो है ना वो सपोर्ट भी चाहिए।
0: जी जी,
1: तो ये है कि फूल और कलियां प्रोग्राम जो है वो किया जा सकता है, हमारे पास टाइम भी है और बल्कि इतना टाइम है कि अगर हमारे बच्चे उसमें शामिल होना चाहें करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर कोई समझते हैं कि ये दोबारा प्रोग्राम जो है फूल और कलियां बच्चों के लिए जो है वो शुरू होना चाहिए और बड़ा मज़ा आता है छोटी छोटी तोतली जबान।
0: चले आप ऐसा करें ना, मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं चंद हैं मेरे दोस्त जिनके बच्चे जो है ना वो हैं बड़े एक्टिव इस हवाले से, मैं कोशिश करता हूँ उनसे रब्ता करके ना तो कोई इस तरह की मैनेजमेंट करते हैं कि अगर उनके बच्चे चाहे टेलीफोन कॉल के जरिए या अगर इधर आना भी चाहें तो बंदा इधर आके उनके साथ प्रोग्राम भी कर सकता है, एक सेगमेंट कम रखते हैं, आप भी कोशिश करें। तो इससे ये है कि चलें यहाँ के बच्चों को भी थोड़ी दिलचस्पी होगी, वो सुनेंगे और देखेंगे भी हमारे प्रोग्राम,
1: और कम से कम उसमें ये होगा कि वो जो एक घंटा आधा घंटा जो जितने का भी प्रोग्राम होगा उस दौरानिए में आपके बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन से जो है वो बचे,
0: ज़ाहिर है ऐसे ही बड़ी मैं पॉजिटिव ये डेवलपमेंट हो सकती है। अच्छा रजा साहब, एक आपने जिक्र किया 14 अगस्त का या बाकी जो हमारे पाकिस्तानी त्यौहार हैं 23 अगस्त या 23 मार्च और 25 दिसंबर और इकबाल डे इस तरह। अच्छा 14 अगस्त का भी काफ़ी पोस्टें मैंने देखी हैं, जी पोस्टें देखी हैं कि वो जनाब 14 अगस्त इस वक्त इस दफ़ा बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी ऑर्गेनाइज़र हैं या जो लोग भी मनाने के लिए ये तैयार हैं 14 अगस्त, तो कोशिश करें कि एक एक ही बड़ा प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन करके ना बाकी लोगों के साथ, बाकी तंजीमात के साथ, उसमें चाहे एम्बेसी भी हो सकती है, चले एम्बेसी अपने उधर तो सुबह के टाइम करते हैं प्रोग्राम, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि जैसा रजा साहब ने भी ये फरमाया कि एक इज्तमाही तौर पर जितनी भी यहाँ तंजीमात हैं, चाहे वो मजहबी हैं, सकाफती हैं, समाजी हैं या सियासी हैं, उन सब को एक जगह इकट्ठा करके एक प्रोग्राम करें बहुत बड़ा सा, चाहे वो ओपन एयर हो या जैसे टाउन हॉल में गोल्फ प्लेस पे होता रहा है, इस तरह का होना तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा इफेक्टिव है। जी
1: जी जफर भाई कॉलर है हमारे साथ, जी अस्सलाम वालेकुम।
2: जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रजा भाई
1: जी
2: सॉरी फॉर दैट, मैं दोबारा आ गया हूँ, ये क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम का जिक्र हुआ है फूल और कलियों का। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम वतन शेख जफर साहब, ये जो फूल और कलियां प्रोग्राम था ना, यकीन करें कि बड़ों से लेकर छोटों तक ये इतना मकबूल प्रोग्राम था। हमारे बच्चों की उर्दू रेडियो हम वतन से सीधी हुई है, ठीक है,
0: क्या बात,
2: बिल्कुल ये बिल्कुल एक एक बहुत चढ़ते सूरज की तरह सच है। और इसके ऊपर आज फिर इतनी देर बाद देखो हमें अपने बुजुर्गों को याद करना पड़ेगा,
0: हाजी साहब,
2: हाजी साहब मुस्तफा साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो मैं जब भी कब्रिस्तान जाता हूँ अपने दूसरे अजीजों के लिए दुआ, उनके लिए भी दुआ करता हूँ, और नागी साहब थे और पुराने कई दोस्त थे, यानी कि ये जो रेडियो, ये मुझे कहने दीजिए, रेडियो हम वतन की जो मशहूरी थी, कामयाबी थी, ये फूल और कलियां की वजह से इतनी मकबूल हुई थी, इतनी मकबूल। और आप अब मुझे खुशी हुई है दोबारा आपके मुंह से, ये जफर साहब आप माशाल्लाह टैलेंट है, आपके पास टाइम भी है, ऐसा करते हैं ना कि बेशक हर दूसरे हफ्ते रख लें, अगर यानी कि टाइम नहीं होता या क्लील होता है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को ना या दरमियान में टच दे दिया करें।
0: जी जी जी।
2: तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि ये कह लो कि इसके देखो जब हम फोन पर बात करते हैं उसके पीछे हमारी तईद होती है कई लोगों की, कई फैमिलीज की, कई बच्चों की, बुजुर्गों की। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आप तवज्जो दें, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो
0: जी जी मियाँ साहब, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपके भी बड़े कनेक्शन हैं यहाँ डेनमार्क में काफ़ी अरसे से हैं, और समाजी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी काफ़ी मुतर्रक हैं आप, आप भी कोशिश करें, हम सब भी इंफरादी तौर पर सब कोशिश करते हैं कि ऐसे फैमिलीज़ को तलाश करें जिनके बच्चे ये दिलचस्पी रखते हैं अदबी हवाले से, ये नातिया कलाम, हमदिया कलाम या कोई भी अगर बच्चों की कोई ऐसी मतलब दिलचस्पी उसमें अगर वो हैं इंटरेस्टेड, तो उनके साथ आप भी रابطہ करें, हम भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको एक अपने प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाएं, ताकि लोगों को, यहाँ के बच्चों को ख़ास तौर पे पता चले, और उससे फिर दूसरे बच्चे भी इंस्पायर होंगे ना, तो वो ज़ाहिर है उन पर भी वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और जैसा रजा साहब ने फरमाया कि इस वक्त सूरत हाल ये होती है कि बच्चे मोबाइल पर हमेशा हर वक्त लगे रहते हैं या कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, तो चलें ये भी एक कॉन्फिडेंस लेवल पे भी उनकी इम्प्रूवमेंट होगी इस तरह के प्रोग्राम को शुरू करने में, तो हमारी कोशिश होगी
2: इंशाल्लाह ताला। सॉरी आपकी दुआएं फिर मुझे लगी है, लेकिन एक मिनट में बात करूंगा कि आप एडजस्टमेंट करें, टाइम निकालें, महीने में एक दफा हो, दो हफ्तों के बाद हो,
0: जब शुरू हो जाएगा ना प्रोग्राम, मियां साहब
2: हम आपको इंशाल्लाह ताला बच्चे मुहैया करके देंगे।
0: ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रजा साहब, मैं समझता हूँ कि ये भी सिलसिला अगर शुरू हम कर देना तो इससे भी एक, मैं समझता हूँ कि हमारे ये डेनमार्क के बच्चों के हवाले से जो उनकी बाकी अदात हैं उनसे भी थोड़ा सा ज़रा हट जाएंगे, ख़ासतौर पे ये कंप्यूटर या मोबाइल पे ज़्यादा इस्तेमाल इनका, ये बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ ट्रेंड ना लोगों का, क्योंकि बाहर भी जाएँ घर भी देखें तो बच्चे पास अपने कोई मेहमान आए हुए हैं, वो अपने कामों में वो बैठे हुए हैं, तो ये होना चाहिए जरूर।
1: बिल्कुल जफर साहब, ये एक चीज़ है, इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं इसको, फूल और कलियां जो है प्रोग्राम इसको नई शक्ल में। लेकिन ये है कि अब मैं कैमरे के पीछे खड़ा होता हूँ, कैमरे के सामने अगर कोई बैठा हो बच्चा या بڑا جو لیڈ کر رہا ہو تو اس سے ایک فرق پڑے گا. لیکن اس پہ جو ہے یہ میرے خیال میں کوئی ایسی کیا کہتے ہیں اس کا چیز نہیں ہے کہ نہ ہو سکے.
0: جی جی,
1: تو بالکل جناب اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. گرمی کی چھٹیوں کے بعد دیکھتے ہیں
0: جی
1: کوئی پروگرام لائے عمل بناتے ہیں اس کا.
0: ٹھیک چلیں. اچھا رضا صاحب, دوسرا کیسا آپ چھٹیاں کیسے گزار رہے ہیں, یا کوئی پلان ہے کہیں؟
1: چھٹیاں بچے گزار رہے ہیں, ہم تو ابھی کام کر رہے ہیں.
0: اچھا
1: چھٹیاں جو ہیں وہ ابھی کچھ ہفتے ہیں.
0: میری طرح ہی میں بھی کام ہی کر رہا ہوں, بچوں کو تو چھٹیاں ہیں. لیکن
1: میرے خیال میں آپ نے اور میں نے نا وہ بابے قائد اعظم کا ایک قول تھا کہ
0: کام کام اور
1: کام اور کام.
0: ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ویسے ہمارے لیے کام ہی اچھا ہے, کیونکہ ہم اگر گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے سست ہو جائیں گے. تو دوسرا یہ جو میں نے ذکر کیا کہ 14 اگست آ رہا ہے, واقعی ہمارا یہ بڑا بہت بڑا دن ہے, اور اس دن کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں. تو ہماری خواہش تو یہی ہے, دلی خواہش, کہ یہاں جو بھی پروگرام ہوں, اور اگر ایک پروگرام ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ افیکٹو ہوگا, لوگوں کو زیادہ فیسینیٹ کرے گا. تو دیکھیں چلیں, جب آئے گا تو پھر پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ باقی جو ریکویسٹ ہم نے کی ہے ناظرین کے, آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوا کریں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی بات کا بھی پتہ چلتا ہے, آپ کے ذہن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کس حوالے سے کس موضوع پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم بجائے ایک محدود پیمانے پر کسی مہمان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر اس سے اس کے پروفیشن کے حساب سے بات چیت کریں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی باتوں کو اس میں اضافہ کر کے مختلف موضوعات پر آپ لوگوں سے بھی اپنی باتیں شیئر کریں. جی
1: ویسے ظفر صاحب آئیڈیا آیا, کیونکہ ابھی آپ کے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے,
0: جی
1: اس پہ اگر تھوڑا سا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم, اور یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے 20-25 سال کا یہاں پہ,
0: جی
1: کہ جب ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں, جب وہ نہیں آتے تو پروگرام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے.
0: جی جی,
1: تو اگر ایک نیا پروگرام, اس کی پہلے بھی تھوڑی سی آئیڈیا آیا تھا کہ اس پروگرام کا نام میرے ذہن میں ہے,
0: جی جی,
1: کہ اگر کوئی کسی کی الجھن ہے, یعنی کوئی کسی کی کوئی پریشانی ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو وہ خود سوچ یعنی حل نہیں کر سکتے اور کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے, تو اگر وہ ہمیں مثال کے طور پہ خط لکھ دیں, ای میل لکھ دیں, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ مینشن کر دیں کہ جناب آپ نے میرا نام نہیں لینا,
0: ٹھیک ہے
1: تو ہم اس ایشو کو جو ہے وہ لے کے آ کے اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. پھر ہمارے جو سامعین ہیں روڈ ٹیلی فون کر کے وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں, تو جو ہمارے جن کا وہ ایشو ہوگا, جن کا وہ مسئلہ ہوگا, جن کا وہ پرابلم ہوگا, وہ ان کو شاید اس کو حل کرنے میں, کیونکہ جب ایک کی رائے تو ایک ہوتی ہے, جب وہی رائے اگر 10 لوگوں کی ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ جی آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں.
0: بالکل, یہ بالکل درست بات ہے. لیکن بات پھر وہی رضا صاحب آتی ہے کہ اس کے پیچھے سب سے انفرادی ذمہ داری اس بندے کی ہے, کہ اگر اس میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے اس کو اس نے کس طرح امپروو کرنا ہے. میں چاہے جتنا بھی کوشش کر لوں نا, جتنی دیر اس کے اندر سے یہ چیز وہ شرمانا جھجکنا یہ ختم نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی وہ اس کو حل نہیں کر سکے گا. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کوشش کرے, ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اگر اسٹوڈیو میں نہیں آ سکتے ٹائم نہیں ہے اس کے لیے, وہی بات کہ وہ خود.
1: اچھا ایک چیز کا تو میں بھی اعتراف کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پیاسا جو ہے نا وہ کنویں کے پاس جاتا ہے.
0: جی جی
1: ٹھیک ہے,
0: ایسے ہی
1: کچھ پیاسے ہم بھی ہیں, کچھ پیاسے ہمارے سامعین و ناظرین بھی ہیں.
0: جی جی,
1: تو وہ تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں, وہ ہمارا پروگرام دیکھ بھی لیتے ہیں, سن بھی لیتے ہیں,
0: ٹھیک ہے,
1: لیکن شاید ہم میں وہ کمی ہے کہ ہم وہ مائک لے کے ان کے سامنے پیش نہیں ہوتے, جس طرح بھی یہ پروگرام ہوتے ہیں.
0: جی جی,
1: یہاں پہ مختلف ہو گئے, کیونکہ وہاں پہ تو لوگ آلریڈی گیدر اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, تو اگر ہم وہاں پہ مائک لے کے کیمرہ لے کے چلے جائیں اور وہاں سے ہلکی پھلکی سی ان کے ساتھ گپ شپ کر لیں,
0: جی
1: وہاں کے ان کے حالات جان لیں, ان سے اگر کوئی بھی ٹاپک ہے, کوئی ایشو ہے, ان سے پوچھ لیں, کوئی رائے لے لیں, کوئی سروے کر لیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے بھی ہے کہ ہم بھی اس طرح جو ہے عوام میں نہیں نکلے یا گئے شاید ہم
0: اس طرح. بالکل ہے, اسی طرح ہی ٹائم کی کمی ہوتی ہے. اور میں کل کا ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ البرٹ سٹون میں ایک پروگرام تھا, یہ سارا وہاں میں گیا, لیکن وہ ٹائم کی بہت کمی تھی, میں اکیلا تھا, ظاہر ہے بچے بھی وہ دوسری جگہ پہ تھے, گئے ہوئے تھے, तो मैं अकेला नहीं मतलब है मैनेज कर सकता ना, या इसके साथ अगर कोई आपके साथ कोऑर्डिनेशन होती तो चले जाते, तो वहाँ जाके फिर भी मैंने कुछ वो क्लिप्स बनाए हैं, वो मैं एडिट करके ना तो वो चढ़ाऊंगा।
1: कासम नज़ीर साहब टीम वर्क जो है ना वो सबसे जो है ना वो ज़रूरी है। जी, अकेला आदमी आप कैमरा उठाएंगे मुश्किल, माइक पकड़ेंगे
0: मुश्किल हो जाता है
1: बात करेंगे।
0: ज़्यादा लोग जो है ना वो चाहते हैं कि चलें जी। अच्छा वो जब मैं क्लिप बना रहा था ना तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये कहाँ आने रहोगे, उनको बताया मैंने फेसबुक पे रेडियो आम वतन की वेबसाइट उस पर होंगे, तो ज़ाहिर है वो खुश हुए कि ये चलें वहाँ का नुमाइंदा है या इस तरह। लेकिन फिर भी मैं उस तरह मैनेज नहीं कर सका ना, वो एक तो टाइम की कमी थी और दूसरा अकेला था मैं। तो बहरहाल ये है कि इसके लिए हम कोशिश करते हैं कोई इस तरह की, जैसा आपने सुना ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रेडियो हम वतन का माइक लेकर ना फील्ड में जाऊं, ताकि लोगों को पता चले कि ये रेडियो हम वतन, पता तो है ज़्यादा लोगों को, लेकिन उनको जब पता चलेगा कि ये वाकई अमली तौर पे ये एक्टिव है तो फिर अच्छा लगता है ना कि ज़ाहिर है, और इस तरह फिर वो लोग कोशिश होगी उनकी बातचीत करने की भी, तो ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह करते हैं। तो ये मदन नासिन आज का प्रोग्राम था और हमारी ये कोशिश होगी, ठीक है हमारा प्रोग्राम रूटीन वाइज चलता रहेगा, किसी मेहमान के साथ हर प्रोग्राम में हाज़िर हुआ करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गाय बगाए हम इनफरादी तौर पर भी अपने आप को पेश करें, ताकि आप लोग बताएं कि हम आपके साथ किस तरह की बातें करते हैं। अगर वो नागवार गुजरती हैं उसके लिए हम माजर चाहते हैं, और अगर अच्छी गुजरती हैं लगती हैं आपको तो उनको आप पल्ले बांधा करें, ताकि हम सब का भी भला हो सके, फ़ायदा हो सके और अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो सके। थैंक यू सो मच। बाद इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत हाज़िर होंगे। इंजॉय करें समर को भी और हमारी पाकिस्तानी सौगात आमों को भी, और जितने प्रोग्राम उनमें शामिल भी हों तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ साथ रहेंगे। और अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क पाइंदाबाद।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मोहित पीजादा, बट नॉट इन वॉशिंगटन, आई एम इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा। ऑरलैंडो अमरीका का बड़ा खूबसूरत शहर है, यह मशहूर है अपने थीम पार्क्स की वजह से। यह बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन मैं और बहुत से लोग यहाँ पे ना तो टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से हैं ना इसके थीम पार्क्स की वजह से हैं। इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, शहबाज गिल साहब यहाँ पे हैं, कासिम सूरी साहब यहाँ पे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमरीका के रिप्रेजेंटेटिव सजाद बरकी साहब भी यहाँ पे हैं। हम सब यहाँ अपना के कनेक्शन में नहीं है, क्योंकि हम अपना के बहाने यहाँ पे आए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि अपना जो है उसके ऊपर पाकिस्तान की एम्बेसी ने, एम्बेसी बीइंग कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तानी फौजी अफसरान, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि हमारी तरह के जो बुरे लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्हें अपना के अंदर उसके इवेंट्स में बोलने का मौका नहीं मिलता। सो मच सो के यहाँ पर चंद और फिजिशियन एसोसिएशन हैं, जैसे फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, और बहुत से डॉक्टर साहिबान हैं। वो चाहते थे कि इस कम अज़ कम अपना के इवेंट में ना हो, तो कम अज़ कम उस प्रेमिसेस में जहाँ जिस होटल में जिस रिजॉर्ट के अंदर अपना इवेंट कर रही है, वहां पर कम अज कम हम एक कमरा ले लें, एक कोई छोटा मोटा, और वहां पर हम एक टॉक कर सकें। लेकिन अपना ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया होटल के ऊपर, और वो भी चीज़ जो है वो डिनाई कर दी। इस वक्त अपना की जो सियासत हो रही है नॉर्थ अमेरिका में, वो पाकिस्तान की सियासत का एक मिरर इमेज है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका बहुत सा जिक्र करूंगा, और भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का मैं मसलसल जिक्र करता चला जाऊं। लेकिन मैं एक ऐसी जगह पे हूं इस होटल के कमरे में जो वाईफाई है, यहां पे स्पेशल वाईफाई अवेलेबल ही नहीं है जो आप एडिशनल पेमेंट पे ले सकते हैं। वाईफाई बहुत स्लो है, और यहाँ सम रीज़न की वजह से मेरे अपने फ़ोन का जो वाईफाई कनेक्ट है वो भी बहुत स्लो है। तो ये मैं वीडियो, ये वीलॉग जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, दो दो ढाई ढाई मिनट के टुकड़ों में इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर इसकी मैं रेजोल्यूशन को कम करूँगा, उस रेजोल्यूशन को कम करके मैं इसको जोड़ूंगा, फिर इसको मैं आप तक लेकर आऊँगा। इसमें खासी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़े सब्र से आप इसको देखें, और इसके जो मसाइल हैं उनको आप माफ़ कर दीजिए। लेट्स एक्चुअली स्टार्ट। सबसे पहले ये नोट करें कि अब से तकरीबन एक घंटे में, जब आप ये सुन रहे हैं, ऑरलैंडो में जहाँ मैं हूँ, यहाँ पर अपना की जहाँ इवेंट हो रहा है, उस होटल से, उस रिजॉर्ट से तकरीबन 10 या 12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पे फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने और लोकल कम्युनिटी ने और फिजिशियंस ने मिलके एक बहुत बड़ी कॉन्ग्रीगेशन और मीटिंग ऑर्गेनाइज की है पाकिस्तान के इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। मैंने इसका एड्रेस, इसका सारा महलो वकू मैंने ट्वीट भी किया था, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे अलावा डॉक्टर शहबाज गिल होंगे, जनाब कासिम सूरी साहब होंगे, सजाद बरकी होंगे, उसके अलावा भी बहुत से लोग होंगे। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे तकरीबन 250-300 लोग होंगे। इसकी अट्रैक्शन खाली डिस्कशन नहीं है, इसकी बहुत बड़ी अट्रैक्शन ये भी है कि डॉक्टर साजिद साहब जो हैं, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिनका ये बुनियादी तौर पे फॉर्म हाउस है, उनकी जगह है, उन्होंने पाकिस्तान से स्पेशली जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने 64 मेरे ख्याल है आम जो है वो उसकी पेटियां मंगवाई हुई हैं, और तकरीबन उस पर $10,000 जो है वो उन्होंने खर्चे हैं। और मैंने उन पेटियों की तस्वीर ली थी, छोटी सी फुटेज, वो फुटेज भी मैं आपको दिखाता हूं। तो आप अगर ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं और आप डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, तो कम अज कम आमों के लिए आप वहां पर जरूर आएंगे। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देयर। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस वक्त अपना के अंदर जो सियासत हो रही है, अपना के अंदर जो पावर डायनेमिक्स हैं, अपना के अंदर जो बहस हो रही है, अपना के अंदर जो एक खिंच खिंच खिंच खिंच और कशमकश है, वो पाकिस्तान ही की सियासत का एक माइक्रोकॉज्म है या उसकी एक रिफ्लेक्शन है। तो पहली जो कंट्रोवर्सी मैंने यहाँ पे आके देखी वो ये कि यहाँ पर कोई बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए, उन पोस्टर्स में जहाँ शायर मशरक़ अलामा इकबाल हैं, कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना हैं, वहाँ पर इमरान खान का भी एक इमेज है, उनके वर्ल्ड कप के मेरा ख्याल आखिरी बॉल का, लेकिन उस इमेज को डिफेस कर दिया गया है। जब वो लोगों ने उस पोस्टर को देखा तो उस पर खप पड़ गई, उस पर सोशल मीडिया पर खप पड़ी, उस पर ट्विटर पर खप पड़ी। मेरा ख्याल है डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी वीडियो में उस पर बहुत लंबा चौड़ा तबसरा किया है। फिर उसके ऊपर अपना के जो प्रेसिडेंट हैं, राव बाबर मेरा ख्याल है उनका नाम है, उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी उस पर एक्सप्लेनेशन दी है, और भी अपना के जो मुख्तलिफ मेंबरान ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि हादसा कैसे हुआ। अच्छा, अब इस पर बहस तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैंने उस पोस्टर को देखा है, मुझे बहुत शक है एक्सप्लेनेशन, हालांकि अपना वालों ने अपनी अपनी दी है कि कैसे हो गया, ये गलती हो गई, हमें पता नहीं है कैसे हो गया। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जिस आर्टिस्ट ने उसे डिजाइन किया है, उस आर्टिस्ट ने शायद उसको डिजाइन ही ऐसे किया है।

डिफेस कर दिया है, और वो डिफेस जब किया भी है तो सबको पता चलता है कि ये इमरान खान का इमेज है। पर ये मेरा एक अपना पर्सनल एनालिसिस है, इसको कोई भी बाय नहीं कर रहा है, इसका 0.01% भी इसको बायर नहीं है। इसके लोग यही समझते हैं कि जब ये एक्चुअल डिजाइन बनाया है, प्रॉब्ली ये पाकिस्तान से किसी डिजाइनिंग कंपनी ने, कंसल्टेंट ने बनाया है, बाद में भाई लोगों का उसके ऊपर प्रेशर आ गया है या अपना के अंदर से कुछ हुआ है और उन्होंने उसे डिफेस कर दिया। लेकिन ये जो कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे चल रही है इस वक्त, आप समझें कि यहाँ पर मेरा ख्याल है अपना जहाँ पर जिस रिजॉर्ट में अपना का ये सारा इवेंट हो रहा है, और इनफैक्ट वहां पर मेरे ख्याल 2500-3000 लोग तो वहीं ठहरे हैं, लेकिन उसके अलावा भी सैकड़ों लोग और होटल्स के अंदर भी ठहरे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस जिस होटल में मैं हूं, यहां पर भी कई सौ लोग हैं। तो इसकी लॉबीज में, कॉफी शॉप्स के अंदर, डिफरेंट जगहों पर जो डिस्कशन हो रही है वो इसी हवाले से हो रही है कि भाई ये कैसे हो गया। और वंस अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि अपना के अंदर के जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का माइक्रोकॉस्म बन चुका है। इससे पहले कि मैं अपना के अंदर की जो एक पॉलिटिक्स है, अपना के अंदर जो एक बहस हो रही है, अपना के अंदर जो फिजिशियंस हैं उनके दरमियान में जो सोल सर्चिंग हो रही है, जो एक दूसरे के ऊपर लान तान हो रही है, जो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन के हवाले से कि भी हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और कैसे हमें पाकिस्तान की एम्बेसी ने और पाकिस्तान की एम्बेसी को चंद अफसरान ने, मेरा ख्याल है एक ही कोई वहाँ पे फौजी अफसर हैं जिनका सब लोग नाम ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो गालिबन जो भी हैं मतलब ब्रिगेडियर लेवल के हैं, उनका मसलसल लोग नाम ले रहे हैं कि भाई वो पूरी एम्बेसी को चलाते हैं। एक और हमारे खुफिया इदारे के साहब हैं, वो गालिबन सिविलियन हैं, वो दोनों मिलकर पूरी एम्बेसी को चलाते हैं और एम्बेसडर साहब इरेलीवेंट हैं। और एम्बेसी फिर अमरीका के अंदर जितनी भी पाकिस्तानी एसोसिएशन हैं लोगों की, खा वो ओपन हो खा वो अपना हो, उनको गवर्न करते हैं। और गुज़िश्ता 2 बरस में उन्होंने तमाम चौधरी चौधराहट इसकी संभाल ली। इस हवाले से यहाँ पर बड़ी बहस हो रही है, मैं मजीद उसके ऊपर कॉमेंट करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बहस के ऊपर चलूँ, बहस भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाना शेयर करना चाहता हूँ। वो ऐसे कि जब मैंने यहाँ पे ऑरलैंडो के एयरपोर्ट पर मैंने लैंड किया तो कुछ लोग रिसीव करने के लिए आए हुए थे, उनकी बहुत मोहब्बत, उनकी बहुत शफकत। और एक डॉक्टर साहब की गाड़ी में हम सफर कर रहे थे, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द होटल जहां हम ठहरे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब से कि आप पाकिस्तान भी जाते रहते हैं, कहने लगे क्योंकि मैं आपको पता जा नहीं सकता, मेरा भी बड़ा दिल तड़फता है कि भाई 4 साल होने को हैं और मैं कुछ जाऊँ पाकिस्तान में जाके फिर देखूँ कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मैं इस्लामाबाद जाऊँ, मैं लाहौर जाऊँ, मैं कराची जाऊँ, मैं मुल्तान जाऊँ, फिरूँ वहाँ पर जाके लोगों को मिलूँ। मुझे मैंने जब इस्लामाबाद में होता था तो मेरा ख्याल हफ्ते में 3 दिन तो मेरे सरीना के अंदर गुजरते थे, बाकी मैरियत में गुजरते थे। शायद ही कोई दिन होगा जब मैं इन तमाम जगहों पे नहीं जाता था, इंटरेक्शन था मेरा बहुत ज़्यादा। मेरे फ़ोन के ऊपर तकरीबन 20,000 लोगों के फ़ोन नंबर मेरे फ़ोन के अंदर थे, तो मेरा बड़ी बड़ा दिल चाहता। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाते हैं पाकिस्तान, कहने लगे हाँ मैं जाता हूँ। बड़ी उन्होंने मायूसी से कहा कि जाता तो मैं रहता ही हूँ 6-7 महीने के बाद। तो मैंने कहा कि फिर क्या आप देखते हैं वहाँ पर, कहने लगे मुझे हर दफ़ा पहले से ज़्यादा वहाँ के हालात जो हैं वो ख़राब लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जहन जो है उसकी रिग्रेशन हो गई है, और एक ऐसी रिग्रेशन हो गई है, उनका जहन छोटे से छोटा होता चला जा रहा है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं खैबर से कराची तक, चूंकि वो उस जुल्म के उस पूरे ढांचे के अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए उनको ये पता ही नहीं है कि उनके हालात किस किस्म के हो चुके हैं। मैंने कहा इसकी क्या वजह है, उन्होंने कहा मैं इस दफा जब लास्ट टाइम गया तो मैं चूंकि मुझे इब्ने सफ़ी का जो कैरेक्टर है इमरान सीरीज उसका मुझे बचपन से शौक था, तो मैंने उसकी सारी की सारी इब्ने सफ़ी और मसर कलीम ने जितनी भी किताबें इमरान सीरीज की लिखी थी वो सारी की सारी वो डॉक्टर साहब कहने लगे मैंने खरीद ली। उसका मेरा एक बहुत बड़ा बॉक्स बन गया। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा मैं उसको बाय एयर, मैंने उसकी कॉस्ट भी पे की बाय एयर लाने के लिए, तो वहाँ पर जो कस्टम की खातून औरत थी उन्होंने मुझे कहा ये क्या है, ये इमरान सीरीज क्या है, ये इमरान सीरीज क्या है, इसका इमरान के साथ क्या ताल्लुक है। तो कहते हैं मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऑथर की सीरीज होती थी इब्ने सफ़ी की और इसका नाम इमरान सीरीज था, उसका कैरेक्टर जो है इमरान था। कहते हैं वो कन्विंस नहीं हो सकी, उनको ये शक रहा कि ये जो सीरीज है इसका इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक है, और ऐसा ना हो कि इमरान खान के ऊपर को बहुत सा मवाद जो है वो डॉक्टर साहब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके अमरीका ले जाए, उससे कोई सियासी मसला जो है उनके लिए पैदा हो जाए। और उन्होंने कहा कि ये नहीं जा सकता यहाँ से कस्टम से। और उसके बाद उन्होंने और भी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले कस्टम वाले और बुला लिए, उन्होंने कहा कि हमने अब आपके ऊपर केस बनेगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका हमने रिकवरी कर लिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जो कस्टम वाले थे उन्होंने कहा कि अब तो ये केस बनेगा क्योंकि ये हमने रिकवरी कर भी लिया, माल हमने माल मसरूका जो है हमने बरामद कर लिया, और उनके ऊपर उन्होंने केस बनाना शुरू कर दिया। और बहुत मुश्किल से फिर दरमियान में किसी ने कहा कि यहाँ पे आप तकरीबन ऐसा करें कि $500 दे दें तो केस खत्म हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने फिर फोन शोन घुमाए और उन्होंने मदद ली अपने खानदान से, और बड़ी मुश्किल से उनका यह मामला खत्म हुआ। और उसके बाद उन्होंने वो किताबें अपने आप को शिफ्ट करवाई, जहाज से वो नहीं आई। उन्होंने कहा मैंने इनको, हालांकि इससे पहले वो जहाज के एयर फेयर के पैसे जो है वो दे चुके हुए थे। अब ये महज कोई कंफ्यूजन थी, इमरान का नाम इसके साथ लग गया या ये करप्शन की कहानी थी, ये ठीक तरह से डॉक्टर साहब को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन इससे आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। चलते हैं उस डिफिकल्ट पेनफुल तकलीफ से किस्म की बहस में जो अपना के जो मेंबर फिजिशियंस हैं उनके दरमियान हो रही है।

0: जब मैं कल यहाँ पहुंचा तो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था वहां भी बहुत से लोग थे जो अपना के मेंबर थे, फिजिशियन थे, और उसके बाद मैं उस रिजॉर्ट में भी पहुंचा, देर से पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, चूंकि एक फेस सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, पुराने टेलीविजन की वजह से, तो मेरी मुसलसल लोगों से मुलाकात हुई, छोटी छोटी टुकड़ियों में भी मुलाकात हुई, अलग से इनफरादी तौर पर भी मुलाकात हुई, किसी से कॉफी पे भी मुलाकात हुई, उसके बाद मैंने लोगों से डिनर भी किया, और ये सिलसिला रात के 2 बजे से आगे तक जारी रहा। अब आसानी से मैं ये कह सकता हूँ कि 100 से ज्यादा लोगों से मैंने मुलाकात की, उसमें वो फिजिशियंस भी हैं जो 9/11 के बाद यहाँ पे आए हैं, 20-20 बरस से यहाँ पे हैं, कोई 15 बरस से है, कोई 20 बरस से है, कोई 25 बरस से है, कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे 1970 की दिहाई से आए हैं, 50 बरस से हैं, ऐसे लोग हैं जो 40 बरस से हैं, ऐसे लोग हैं जो 30 बरस से हैं, और मैं वो फिजिशियंस भी हैं जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जो हॉस्पिटलिस्ट हैं, जो इंटरनिस्ट हैं, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पाकिस्तानी फिजिशियन जो हैं वो साइकियाट्रिक हैं, चाइल्ड साइकियाट्री में है, पीडियाट्रिक्स के अंदर हैं, डेंटिस्ट हैं, तो एक प्लेथोरा है, एक मतलब एक वैरायटी थी जिनसे मेरी बात हुई। और एक उन सब के अंदर जो कॉमन थ्रेड ऑफ फीलिंग है वो ये है कि कैसे गुज़श्ता 2 बरस में 2023 के बाद ग्रेजुअली जो अपना के नई लीडरशिप आई है, जो पहले खातून प्रेसिडेंट आई, हुमैरा पता नहीं क्या नाम था उनका, फिर उसके बाद जो अभी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राव जो हैं, इनके होते हुए, और शायद यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो, मेरे ख्याल ज़्यादा लोग डॉक्टर हुमैरा का ही जिक्र करते हैं, तो किस तरह से अपना के तमाम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसे पाकिस्तान की एम्बेसी ने कंट्रोल कर लिया है। और लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एम्बेसी के डायनामिक्स को वहाँ के 1-2 फौजी अफसर हैं, एक गालिबन फौजी अफसर हैं, एक गैर फौजी अफसर हैं जो ISI के हैं, वो शायद गैर फौजी अफसर हैं, जो मिलिट्री के हैं वो कोई ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने एम्बेसी को भी कंट्रोल किया हुआ है। एम्बेसडर बिकॉज अब लोग कहते हैं कि एम्बेसडर की जगह अगर ChatGPT का कोई बनाया हुआ कार्टून होता तो वो भी इसे कहते हैं ठीक होता, बिकॉज एम्बेसडर की इससे ज़्यादा अब कोई हैसियत जो है वो है नहीं, और सारी एम्बेसी भी जो है ये अफसर रन करते हैं 2-2.5, और उसके बाद इसे कहते हैं ये अपना को भी रन करते हैं, ये ओपन को भी रन करते हैं, जितनी भी अमेरिका में कहीं पर भी अगर 50 पाकिस्तानी एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी जो तंजीम होती है उसे यही लोग रन करते हैं। और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसमें जो सोल सर्चिंग है वो ये है कि हर आदमी आपको ये बात बता सकता है कि जब वो यहाँ पे आया था तो उसके पास शायद जेब में $1,000 थे या उससे भी कम थे, या $600 थे, एक सूटकेस में वो यहाँ पे आया, और यहाँ पे उसके पास कोई सिफारिश नहीं थी, वो एक ओपन कंपेटिटिव सिस्टम में आया, उसके पास अपनी मेडिकल की डिग्री थी, उसने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपने लिए कोई रेजिडेंसी हासिल की, फिर उसने बोर्ड किए, उसने स्पेशलाइजेशन की, फिर उसने अपना रेजिडेंस स्टेटस हासिल किया, फिर सिटीजनशिप हासिल की, फिर उसने हॉस्पिटल्स में काम किया, पूरे अमरीका में फिरा, उसने अपनी कंपनीज बनाई, LLC बनाई। आज ऐसे बहुत से फिजिशियंस भी हैं जिनके पास 3-3, 4-4, 5-5 एकड़ के घर हैं, किसी के पास पता नहीं गाड़ियों का एक फ्लीट है, उनके बच्चे बहुत सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस में पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कम्युनिटी ये महसूस करती है कि अपनी तमाम तर इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस के बावजूद इस कम्युनिटी का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। इनका मक्का जो है, इनका जो मदीना है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एम्बेसी है। गुज़श्ता 2-3-4 बरस में इन तमाम फिजिशियंस ने देखा कि इन्होंने अपने हक हलाल के टैक्स पेड पैसों से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन्होंने खर्च किए अमेरिकन कांग्रेसमैन के ऊपर, अमेरिकन सेनेटर्स के ऊपर, उनसे एक ट्वीट हासिल करने के लिए पाकिस्तान की सियासत पे, इंसानी हकूक पे, इमरान खान पे, कभी कोई रेजोल्यूशन के लिए, और जो कांग्रेसमैन थे, जो सेनेटर्स थे, उन्होंने के 10-12-15 हज़ार डॉलर या 20,000 या 30,000 डॉलर फंड रेजिंग में जो किए वो जेब में डाले, और एक आध उन्होंने लेटर लिख दिया किसी कमेटी को, एक आध लेटर उन्होंने लिख दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, या उन्होंने कोई 1-2 ट्वीट इनके लिए कर दिए। तो अब एक नोइंग फीलिंग है, एक पेनफुल फीलिंग है कि हमारा बावजूद इस तमाम एक्सरसाइज के हमारा कोई इन्फ्लुएंस डेवलप नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड फील्ड मार्शल साहब जो हैं उन्होंने एक रिश्वत का अपेरेंटली अब सभी लोग ये कह रहे हैं, और सब लोग के चर्च, अब ये कोई कहना इसलिए मुश्किल नहीं है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वॉशिंगटन पोस्ट की बहुत ही तसीलन स्टोरीज 2025 में छपी कि कैसे पाकिस्तान की जो मिलिट्री हुक्मरान है उन्होंने जो ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है इसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, एक रिलेशनशिप डेवलप कर लिया स्टीव विटकॉफ के साहेबजादे जैक विटकॉफ से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हर हफ्ते 10 हफ्ते के बाद फील्ड मार्शल की उन्होंने तारीफ करनी शुरू कर दी कि फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट गाय, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। के साथ साथ कभी कभी उनको याद रह गया, ये मौका मिला तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उनका भी उन्होंने जिक्र कर दिया। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके नाम कभी भी याद नहीं हो सके, बस वो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ही कहते रहे। लेकिन उसका इफेक्ट यह निकला कि जितने भी रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थे उनकी बेचारों की अर्थ हो गई, और जो बहुत से और भी लोग थे वो सब घबरा गए कि जब प्रेसिडेंट की पोजीशन ले रहा है तो जाहिर है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी फिर जनरल आसिम मुनीर की तारीफ करनी शुरू कर दी।
1: आप और हम वतन एक संग नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाई

0: कि इंसान बातचीत नहीं कर सके। अब हमें याद है कि बाबा जी जब 86 साल की थी उनकी उम्र फौत होने से पहले, और उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी थी, वो बातें करते थे, हर उनको चीज़ें याद थी। वो इसलिए कि वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे, वहाँ पर डेली कन्वर्सेशन होती थी, बातें होती थी, जिससे एक शख्स की याददाश्त जो कायम रहती है। आपकी याददाश्त कैसी है नसर भाई?
1: मुझे अभी तो पता है कि मैं बादशाह साहब से बात कर रहा
0: हूँ, इसीलिए ना आपको फ़ोन किया चेक करने के। अच्छा, आपकी याददाश्त तो इतनी अच्छी है कि आपको पिछले 50 साल के जो डेनमार्क में जो कुछ हो रहा है वो आपको एक एक लफ्ज़ याद है। तो मैं अगर डेनिश खबरों की तरफ चलूँ तो सबसे पहले तो ये है कि कल हफ्ते के दिन 4 तारीख थी, और पूरी यूरोप में जो है, ख़ास तौर पर डेनमार्क में, अमेरिका का 250वां आज़ादी का दिन मनाया गया। और आपको याद है कि डेनमार्क उसको बड़े शान से मनाता था, अमेरिकन एम्बेसडर और बहुत आला ऑफिसर जाते थे। लेकिन इस साल कुछ अजीब सी बात हुई है कि उस फेस्टिवल में जो यूलन में होता है रीबिल पहाड़ियों पे, उसमें उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को इनवाइट नहीं किया, और ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन जो है

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: Assalamualaikum, this is Mohit Pirzada in Washington, United States. आज 10 जुलाई 2026 है, जुमे का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में दो सेट्स ऑफ डेवलपमेंट्स बहुत अहमियत रखती हैं। एक का ताल्लुक ईरान और अमेरिका से है, दूसरी का ताल्लुक पाकिस्तान के रकबे के एतबार से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान से है। अमेरिका और ईरान के दरमियान में गुज़िश्ता 48 घंटों के दरमियान में सूरत हाल पेचीदा से पेचीदा, खतरनाक से खतरनाक होती चली जा रही है। और अब हम ये कह सकते हैं बगैर किसी मुबालगे के कि वो जो सारा पीस प्रोसेस चला अप्रैल के बाद से, जिसके नतीजे में एक 14 नुकाती MOU साइन हुआ कहीं 16-17 जून को, वो सारा का सारा प्रोसेस जिसके अंदर पाकिस्तान ने, कतर ने, तुर्की ने, बहुत से ममालिक ने रोल प्ले किया, वो प्रोसेस सारा का सारा फेल होता नजर आ रहा है। और गुज़िश्ता 48 घंटों में अमेरिका और इसराइल की हिकमत अमली जो है वो भी बड़ी खुल के नंगी होकर हमारे सामने आ गई है। और अब ईरान की काउंटर स्ट्रेटजी क्या है अपने आप को बचाने की, वो भी बहुत खुल के हमारे सामने आ गई और बहुत बेहतर हम इसका एक एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। चंद कमेंट्स में बलूचिस्तान के हवाले से कर दूं। बलूचिस्तान रकबे के

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामेन और नाजरीन, रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहाँ भी हैं खुश खुर्रम रहें। मैं हूँ आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूद सियासी, समाजी और मालूमती नोयत के होंगे और इन सब बातों पे, खबरों पे तबसरा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, हम आपको छोटी छोटी मालूमाती खबरें पहुँचा देना चाहते हैं। सबसे पहले यह है कि अभी आजकल मैंगो का मौसम हुआ है, तो पाकिस्तान कम्युनिटी जो है डेनमार्क में, उन्होंने काफ़ी फेस्टिवल्स किए हैं, मैंगो फेस्टिवल्स। अच्छी बात है, लेकिन मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी फेस्टिवल्स में मैंगो के अलावा कुछ और भी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री वगैरह के बारे में या कल्चर के बारे में भी कुछ प्रोग्राम यहाँ पे होने चाहिए। लेकिन 11 जुलाई कल जो है वो जनाब शेख खुर्रम साहब ने अरेंज किया था मैंगो फेस्टिवल अलबसलून में। बहुत से लोग आए हुए थे वहाँ पे, तो नसर और शौकत और मैं भी वहाँ पे गए थे। तो बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। तो ऐसी जो फेस्टिवल्स की बहुत ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले कहा है। और एक दोबारा यही फेस्टिवल 1 अगस्त को भी दोबारा वहीं पे मनाया जाएगा। और कल सैटरडे को पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जनाब मोहम्मद यूसुफ, जिनको सबका यूसुफ योहाना भी कहते हैं, वो भी आए हुए हैं डेनमार्क में। उन्होंने कल एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो है उसको उनकी सदारत की। और आज वो वियाबो पार्कर में, जहां हमारे नसर मलिक साहब भी रहते हैं, वहीं पे एक हॉल में उनके एजाज़ में एक छोटी सी तकरीब है 5 बजे। तो हम रेडियो हमदन की तरफ से शौकत, नसर भाई और मैं, हम वहाँ पे जाएंगे और अगले हफ्ते आपको बताएंगे वहाँ पे क्या हुआ। तो उसके अलावा वो लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो उनको शायद पता होगा कि 70s-80s में बहुत मशहूर सिंगर्स थी एक बॉनी टालर, वो उनकी भी 75 साल की उम्र में वो फौत हो गई हैं। वो उनका आयरलैंड से ताल्लुक़ था, लेकिन वो इंग्लैंड में रहती थी। तो उन्होंने जो है काफ़ी कॉन्सर्ट भी किए थे और नवंबर में उन्होंने डेनमार्क भी आना था कॉन्सर्ट करने के लिए। तो ये जो है अब फौतगी तो सबके लिए, वो सबका होना उनका। हेल्थ के बारे में चंद एक स्टेप्स हैं, वो हमने कुछ तक जो है रिसर्च की है, ख़ास तौर पे जो लोग 65 साल से ऊपर हैं। रज़ा, आप तो अभी 65 साल के नहीं हुए ना, तो आपके लिए नहीं है ये, हम बुज़ुर्ग लोगों के लिए। वो स्टेप्स ये हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट करने से पहले आप एक ग्लास नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पिएं। उससे आपका जो रात को जो आपके पेट में जो कुछ होता है या और सिस्टम में, वो उसकी सफाई होती है। तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ख़ुद जो है सुबह नाश्ते से पहले एक नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पीता हूँ। बड़ी अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। लाइट एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं डेली बेसिस पे। कुर्सी पे बैठ के आप एक्सरसाइज करते हैं ज़रूरी नहीं है, आप जिम में जाएं। तो वो लोग जो 65 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र रसीदे हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइजेस भी बड़ी अच्छी, लाइट एक्सरसाइजेस ज़रूर करें, टांगों के मसल्स वगैरह के लिए अच्छी चीज़ है। और ये कहा जाता है कि सोना जो है वो बहुत ज़रूरी है, اور وہ یہ نہیں کہ ایک دن آپ 3 بجے رات کو سوئیں اور اگلے دن 9 بجے سو جائیں. اس کے لیے ایک ٹائم مقرر کر لیں, آپ اس ایک ریگولر ٹائم پہ سوئیں اور ریگولر ٹائم پہ اٹھ جائیں, اور سونے سے پہلے جو ہے نا آپ 5-10 منٹ ایکسرسائز کریں سونے کے, جو سونے سے پہلے بریدنگ کی, یہ جو ہمارے جسم میں آکسیجن جاتی ہے, اگر آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں تو اس سے بھی جو ہے آپ کے خون میں وہ ایکسرسائز, وہ آکسیجن جاتی ہے. اس کے علاوہ پروٹین بہت ضروری ہے بزرگ لوگوں کی خوراک میں, اس میں ایگز, چکن, میٹ, فش, نٹس بہت اچھے ہیں, ہر قسم کے دالیں کہا جاتا ہے بڑی اچھی ہیں کھانے کے لیے, اور گریک یوگرٹ ہے, اور وٹامن ضرور لیا کریں آپ, کیونکہ ہمارے اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ وٹامنس نہیں لیتے, تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے جو ہے یا ڈائٹسٹ سے, تو ان کو وہ آپ کو جو ہے نا بتا دیں گے کس قسم کے خوراک آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے. ایک اور جو نقطہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ بزرگ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوشلی ایکٹیو ہوں, یعنی کہ آپ فلم لگا کے جو صوفے پہ بیٹھ کے جو ہے نا ٹیڈ بڑا کر رہے ہیں, اس میں ہے کہ آپ جو ہے نا ایکسرسائز کے علاوہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, دوستوں سے ملیں, باتیں کریں. یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا اس میں تنہائی میں, تو کچھ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں, تو اس سے دور رہنے کے لیے آپ جو ہے نا اس تنہائی سے دور رہنے کے لیے سوشل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے, اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ملیں, اور ملیں تو یہ نہیں کہ صرف کھانا ہی کھائیں, ان سے بحث و مباحثہ کریں, ملکی حالات پہ بات چیت کریں, کوئی خاص موضوع ہے اس پہ بات کریں, اس سے آپ کا دماغ بھی بڑا جو ہے الرٹ رہے گا, اور آپ کو ڈیمنشیا ہونے کا بھی بہت کم جو پر. اور آخر میں کوشش کیجئے کہ نئی چیزیں جو ہے وہ سیکھیں آپ, اس سے کہ آپ کا مائنڈ شارپ رہتا ہے, اور نئی چیزیں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی ہابی شروع کر دیں, لیکن اخبار پڑھا کریں یا کوئی جیسے میں نے پہلے کہا دوستوں کے ساتھ بات چیت کریں, تو آپ کا یہ شارپ مائنڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کا دماغ شارپ ہے تو اس سے آپ کی صحت جو ہے اس کے آپ کی باڈی جو ہے وہ بڑی ٹھیک ٹھاک رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک دو صحت کے بارے میں تھوڑی سی جو خطرناک تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ جو بھی آج کل کوپن ہیگن میں ایک نیا کیڑے جو ہے نا وہ درختوں پہ آ گئے ہیں, لاوا اس کو کہتے ہیں, اور وہ اگر آپ کے جسم پہ لگ جائے, کہیں آپ پھر رہے ہوں جنگل میں یا بیچ پہ لیٹے ہوں, تو اگر وہ آپ کے جسم پہ ہو تو اس سے بڑی خارش ہوتی ہے, اس کا پلیز خیال رکھیں, آپ آئل وغیرہ لگائیں اپنے جسم پہ یا ریت تھوڑی سی, تاکہ اور پھر یا کہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں زیادہ گھاس نہ ہو, ریت میں اگر آپ بیٹھیں یا لیٹیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ لاوا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ہیل ودس لاوا, جہنم کا لاوا, تو یہ جو ہے نا اس سے بڑی خارش وغیرہ ہوتی ہے اور جسم میں جو ہے وہ پھنسیں بھی نکل آتی ہیں. اور ڈینش پارلیمنٹ کے ایک ممبر ہیں, انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ہم اس لاوا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ وہ ایسے درخت جن پہ یہ لاوا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ان کو ہی ختم کر دیا جائے. اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم درخت ہی سارے اپنے تو پھاڑ دیں یا کاٹ دیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کے لیے حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ اس کے لیے کوئی اسپرے وغیرہ کوئی ایسا کیا جائے جس سے وہ پرابلم ختم ہو جائے. ایک اور مسئلہ بھی, ابھی کیونکہ ابھی سمر ہے, لوگ جاتے ہیں بیچ وغیرہ پہ سمندر میں نہاتے ہیں, تو ایک نئی جیلی فش بھی آئی ہے, اس کلر جیلی فش کہتے ہیں, اور وہ خاص طور پہ میڈیٹرینین میں جو لوگ اٹلی, فرانس, اسپین جو جاتے ہیں وہاں پہ بیچز وغیرہ پہ, تو ذرا سا خیال رکھیے جب آپ پانی میں جائیں تو وہ جو جیلی فش ہے وہ بھی ابھی بہت جگہوں پہ نظر آتی ہے. ڈنمارک میں بھی وہ جیلی فش جو ہے ایک قسم کا اسپیشل جیلی فش ہے, بلیک سی میں بھی ہے, کیسپین سے بھی ہے, ڈنمارک کے پانیوں میں بھی ہے, اس کا بھی ذرا خیال رکھیں جب آپ نہائیں تو دیکھیں قریب اجوار آپ کے پاس آپ کے قریب کوئی جیلی فش تو نہیں ہے. لگتی بڑی معصوم ہے, بڑی خوبصورت لگتی ہے, لیکن وہ ہے بڑی خطرناک جب وہ اگر آپ کے جسم پہ لگ جائے نا. اور ایک اسی طرح ہاں अभी आज मैं आजकल सारे वो बीचेस की बातें बता रहा हूँ। कहा जाता है कि एक बहुत ख़तरनाक मछली जो है वो भी मेडिट्रेनियन में आ गई है, और वो इतने उसके जॉज इतने पावरफुल हैं कि अगर वो काट ले तो वो बिल्कुल टांग वांग या जहाँ भी वो काट ले वो उसका बड़ा नुकसान होता है। तो फिर मेरी यही दरख्वास्त है कि जो लोग स्पेन, फ्रांस, इटली वगैरह जाते हैं बीचेस पे समर की छुट्टियों में, उसका भी आप ख्याल रखें। लोकल मीडिया पे आप नज़र रखें, वहाँ पे जो गाइड्स होते हैं उनसे पता कर लें कि वो बीचेस सेफ़ हैं या उसमें आपको थोड़ा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। एक आखिरी खबर जो मैं बताता चलूँ वो ये है कि कुछ लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि उनके आँखों में बड़ा दर्द होना शुरू हो गया है और उसकी कोई वजह नहीं मालूम हो रही। तो डॉक्टर्स ने भी रिसर्च की है, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये कोरोना जो है इतना फैला हुआ नहीं है, लेकिन कहीं किस किस जगहों पे कुछ लोगों को कोरोना हो जाता है और उसकी वजह से उनके आँखों में भी दर्द होता है। तो अगर आपके साथ ये ऐसा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, आई ड्रॉप्स वगैरह डालने की बजाय आँखों के डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे चेकअप कराएँ ताकि आपको सही जो है उसकी दवाई मिल सके। तो ये एक चंद खबरें थी, और आखिर में हम जब नसर साहब के पास जाएंगे तो उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। उनकी एक नई किताब आई है तिलिस्म शब, ये स्कैंडिनेविया के जो 5 ममालिक हैं बल्कि शुमाली यूरोप के डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, उनकी मुख्तलिफ कहानी हैं जिसका जो नसर साहब ने लिखी है, और वो भी पाकिस्तान से एक जिल्द की तौर पे शाया हुई है। मैंने वो किताब देखी है और हम क्या कह सकते हैं, नसर साहब की जो खिदमात हैं उर्दू लैंग्वेज के लिए, उर्दू अदब के लिए, ख़ास तौर पे स्कैंडिनेविया में और इंटरनेशनली, इसकी तारीफ जितनी भी कम की जाए कम है जितनी तारीफ आलमी अदब के बारे में, उर्दू ज़ुबान के बारे में। तो इससे ही हम शुरू करेंगे। नसर साहब आपको
3: जी भाषा साहब, नसर साहब के पास जाने से पहले हमारे एक सामीन ने जो है हमें एक आगाही दी है कि जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब जिन्होंने डेनमार्क आना था कल एक फंक्शन में, वो अभी तक डेनमार्क नहीं पहुंचे। कल भी जब मैं मुंतजमीन से जो मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे शायद कि उनकी फ़्लाइट जो है वो अभी लेट है, तो पता चला कि वो अभी डेनमार्क जो है वो नहीं पहुंचे। और हमारे जो सामाइन सुनने वाले हैं उनका शुक्रिया कि वो हमारा प्रोग्राम सुनते भी हैं और हमें साथ साथ जो है वो आगाही।
2: तो नहीं आएंगे आज,
3: ये अभी पता नहीं है, उन्होंने इतना कहा है कि वो अभी तक जो है वो डेनमार्क नहीं पहुँचे।
2: अच्छा जी, चलिए हम जाएँगे ज़रूर। तो नसर भाई मुबारक हो आपको।
4: जनाब बहुत खैर मुबारक। एक बात की तकरीर चाहता हूँ
2: जी जी,
4: कि ये कहानियाँ मैंने लिखी नहीं हैं बल्कि इन मुल्कों के अजीबों की मुंतखब शुदा कहानियों का हमने 4 आदमियों ने मिलकर तर्जमा किया है।
2: जी जी जी बिल्कुल,
4: और इसे मुरत्तब मैंने किया है।
2: ओह वंडरफुल, तो चलिए थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में, क्योंकि आपने आपने इतना कुछ लिखा है हम तो उसको वी कांट फॉलो, लेकिन ज़रा बता दीजिए ये कहानियाँ जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
4: बस यूँ समझ लीजिए कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड की ये कहानियाँ जो हैं
2: जी,
4: ये अपने अपने ममालिक के साथ साथ पूरे स्कैंडिनेविया की अदबी शनाख्त की तर्जुमान है।
2: अच्छा,
4: और दूसरा इनमें जो सबसे ज़्यादा अहम मकसद सामने आता है वो ये है कि समाज में रहकर समाज की फलाह बहबूद के लिए क्या किया जा सकता है और इसके नतायज से हासिल होने वाले फवायद जो हैं उन्हें किस तरह इज्तमाई तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
2: बहुत खूब,
4: तो ये एक तरह से एक पैगाम है शुमाल की तरफ से मशरक के रहने वालों को कि देखिए यहाँ का अदब किस तरह तरक्की करता है और किस तरह आपने लोगों से मुंसलिक है।
2: तो ये पाकिस्तान में शाया हुई है
4: जी, ये कराची से शाया हुई है।
2: बहुत खूब,
4: और मेरे पास चंद कापियाँ इसकी आई हैं
2: जी,
4: आप देखते हैं कि आगे क्या होता है
2: जी, जी।
4: लेकिन कराची से बड़े इत्मीनान के साथ इन्होंने ये किताब, छोटी सी किताब है लेकिन इसमें जो हम कहानियाँ हैं वो स्कैंडिनेविया के अदब की नुमाइंदा कहानियाँ कहलाया जा सकती है।
2: अगर हमें जिस आपकी खिदमत में थोड़ी सी दरख्वास्त करें वो ये है कि मेरी अभी रजा से भी बात हुई है कि हम चाहते हैं कि रेडियो हमवतन की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी तकरीब की जाए जिसमें आप अपनी ये किताब जो है सीधे सीधे लोग हम उनको बुलाएं, तो ऐसा मुमकिन है?
4: जी क्यों नहीं, आप जो चाहे आपका उसमें करिश्मा साज करें, मेरे लिए तो ये बड़े आजाद की बात होगी जी, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, बड़ी अच्छी बात।
2: बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब सामेन नाजरीन, अब चलते हैं हम डेनमार्क की ख़बरों की तरफ। हालांकि अभी पार्लियामेंट जो है वो एक्टिव नहीं है, लेकिन ख़बरें तो जो हैं वो बहुत आ रही हैं। सबसे पहले तो कि यहाँ का एक नसर भाई बहुत ज़बरदस्त न्यूज़पेपर है, बहुत उसकी वो सीरियस न्यूज़पेपर है इंफॉर्मेशन, उन्होंने डेनमार्क में जो गैर मुल्कियों के और मुसलमानों के बारे में बड़ी बहस हो रही है, हमेशा ही होती रहती है, उसके बारे में उन्होंने एक नई सीरीज़ शुरू की है। और वो सीरीज़ ये है कि वो मुख्तलिफ नौजवान लोगों से इंटरव्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ये जो डेनमार्क में डिस्कशन हो रही है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, क्या वो समझते हैं कि उनकी डेनिशनेस पे जो है वो एतराज़ किया जा रहा है, वो उसको कैसे महसूस करते हैं। तो एक अरबी बैकग्राउंड के हैं एडम एल मतारी, उनका भी इंटरव्यू है, वो आपने भी पढ़ा होगा। वो कहते हैं कि मैं तो बहुत ही जो है परेशान हूँ कि यहाँ पे डेनमार्क जैसे जमहूरी मुल्क में ये क्यों ऐसी जो है डिस्कशंस हो रही हैं, बजाय इसके कि मुआशरे के बारे में बातें की जाए तो हमारे पे इनका जोर किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
4: पहली बात तो यह है कि रोजनामा इंफॉर्मेशन ने ये कोई नया सिलसिला शुरू नहीं किया।
2: अच्छा,
4: जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये कमोबेश हर साल या हर दूसरे साल इस तरह का एक सिलसिला शुरू करता है, जिसमें खास तौर पर तारकीन वतन और उन तारकीन वतन भी मुसलमानों को सामने लाने की कोशिश करता है।
2: अच्छा जी।
4: ये एक अच्छा अमल है क्योंकि इससे हम मुसलमानों को अपना नुकता नजर पेश करने की जगह मिल जाती है। और अब ये बात अलग है कि हम कहते क्या हैं और हमसे पूछा क्या जाता है।
2: ये सब नौजवान लोग पढ़े लिखे यहीं पे पैदा हुए हैं।
4: बिल्कुल आपने बजा कहा। और ये बात जो है ये इस बात को भी अयां करती है कि रोजनामा इंफॉर्मेशन अपने तवस्सुत से
2: जी
4: किस तरह हमारे नौजवानों को मुआशरे में आगे लाने की कोशिश कर रहा है
2: जी,
4: और उनके ख्याल डेनमार्क के बारे में, उनकी सोच और यहाँ रहने के मुताबिक उनके मसाइल और उनकी कामयाबियों का इस तरह जिक्र करता है
2: जी।
4: ये बहुत अहम सिलसिला है, लेकिन इसको महज इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए कि सवालात जो है वो यकीनन यूँ सुनाई देते हैं कि जैसे हम पर कोई हमला किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
2: अच्छा।
4: उन सवालात की तह में अगर जाएं और जवाब देते हुए आप अपनी सोच को हवाई घोड़े पर सवार न रखें बल्कि मौजू की तरफ तवज्जो दें तो ये बहुत अहम सिलसिला बड़ा कामयाब हो सकता है। तो और आपने भी जो जिक्र किया हमारे आदम अलमतारी का
2: जी,
4: तो उन्होंने भी ये चीज बिल्कुल ठीक कही है कि ये क्या वजह है कि हमें इंतहाई दाएं बाजू की नजरों से बारिश में देखा जाता है।
2: एग्जैक्टली जी, बिल्कुल।
4: और हमें यही समझा जाता है कि हम एक तरह से इस मुआशरे में फतूर हैं, मैं फतूर तो नहीं कहूँगा लेकिन कहा यही जाता है।
2: अच्छा।
4: और ये चीज जो है ये गलत है। हमारे बारे में अगर आप ये सोच रखते हैं कि ये यहाँ पर जीव करते हैं, यू करते हैं, मुआशरे पे बोझ है, तो ये सरासर गलत है। उन खूबियों को भी सामने लाइए जिन खुद डेनिश राय आमा को जाहिर करने वाले अदारे जो है वो सामने ला रहे हैं कि किस तरह गैर मुल्की नौजवान नसल जो है वो मुख्तलिफ सनतों में, मुख्तलिफ दफातर में, मुख्तलिफ शोबों में तरक्की करती हुई आगे बढ़ रही
2: है। जी हाँ, इसी पहलू के यही पहलू जो है ना वो अब इंफॉर्मेशन वाले चाहते हैं कि उनके रीडर्स को और डेनिश मुआशरे में इस पहलू को भी जो है आगे किया जाए नौजवानों से बात करने के बाद। अभी
4: एक बहुत अच्छी बात है और मैं ये अर्ज करना चाहूँगा अपने सामने
2: जी जी
4: ये आपके तवसुच है कि जो ही आपके साथ न सिर्फ रोजनामा इंफॉर्मेशन या कोई और अखबार आपसे रास्ता पैदा करे, गुफ्तगू करना चाहे, आपका इंटरव्यू करना चाहे, तो आप जरूर इस मौके से फायदा उठाए,
2: उनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल
4: उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि हमारी नौजवान नस्ल को ये चाहिए कि ये जो रोजनामा इंफॉर्मेशन मुख्य नौजवानों के इंटरव्यू शेयर कर रहा है जिसमें पाकिस्तानी ही शामिल नहीं, सबको मिलते लोग नौजवान लोग जो है वो शामिल है।
2: एग्जैक्टली। और फिर यह कि हर लाइब्रेरी में पढ़ा होता है तो लोगों को खरीदने की भी जरूरत नहीं, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं।
4: बिल्कुल बजा, लेकिन सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि उस इंटरव्यू पर अपने तस्वीर जो है वो अखबार को लिखें।
2: बिल्कुल हाँ, लेटर्स भी लिखा करे जो
4: एडिटर्स के नाम लेटर्स में उस मजमून का हवाला देकर अपने तस्सरात लिखे, और ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुतल्लिक डेंशों की गलतफहमी को दूर करने के लिए।
2: बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा नसर साहब, अगर इसी मौजू को हम लेके आगे बढ़ें तो एक नई रिसर्च आई है डेनमार्क में, वो एक जैसे कहते हैं बम शेल की तरह वो फटी है। वो ये है कि उस डेनिश रिसर्च में ये बताया गया है कि डेनिश हुकूमत ने कई इमिग्रेंट कम्युनिटीज़, ख़ासतौर पे जो ग्रीनलैंड से हैं बच्चे आते हैं, उनके एक ऐसा पैमाना आईक्यू जो है ना इस्तेमाल किया जो उन पर फिट ही नहीं बैठता, और उस पे उसकी वजह से उनको पेरेंट्स से जो है वालदैन से अलग करके कईयों को डेनमार्क भेज दिया, कईयों को वहीं पे जो है बच्चों के घर अलग घरों में रखा गया। तो अब उस रिसर्च से यह है कि हुकूमत बड़ी परेशान है कि ये डेनमार्क के मुस्लिम म्यूनसिपैलिटी जो हैं, बल्दिया जो हैं, वो ज़बरदस्ती बच्चों को उनके घरों से जो है वो निकाल के उनको सिविलाइज करना चाहते हैं, कल्चर करना चाहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो नई रिसर्च आई है इससे म्यूनसिपैलिटीज़ को, हुकूमत को थोड़ी सी समझ आएगी?
4: हुकूमत को समझ आएगी या नहीं आएगी ये तो एक अलग मामला है
2: जी।
4: लेकिन ग्रीनलैंड के बच्चों के साथ ये जो तरीका आजमाया गया था उनकी नस्ल की तहकीक करने के लिए और उनको बकौल तब की डेनिश हुकूमत के उनको अजाब मुआसमाज सिखाने के लिए यहाँ लाया गया था उसकी, तो अब आपने आपको मालूम होगा कि मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो बाकायदा सरकारी तौर पर डेनमार्क की तरफ से माफ़ी मांग चुके हैं
2: जी।
4: लेकिन मामला ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, और अब ये जो आपने जिक्र किया है कि डेनमार्क ने दो लसानी जो जो ब्राज़ीलियों के बच्चे हैं यानी गैर मुल्की बच्चे बरह रास्त अगर हम कहा जाएँ, और वो बच्चे भी शामिल हैं जिनके वालदैन में से एक जो है वो डेनिश है, उनके ऊपर कमोबेश वही तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो आज से कुछ तकरीबन 50 साल पहले 60 साल पहले ग्रीनलैंड के बच्चों पर इस्तेमाल किए गए।
2: बिल्कुल दुरुस्त।
4: और जब ग्रीनलैंड के बच्चों पर इस्तेमाल किए गए वो तरीके अब इस कदर मातूब हो चुके थे कि वजीर आजम को ममलकत डेनमार्क की तरफ से माफी मांगना पड़ी, तो क्या वजह है कि वही तरीके अब गैर मुल्की बच्चों पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं?
2: जी जी,
4: ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए हुकूमत और मुतलका अदारे जो है वो जवाब दें
2: जी।
4: ये और हमारे अपने पाकिस्तानी बहन भाई जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि जब इस तरह का कोई मामला बच्चों के हवाले से घर में पेश आए तो वो बाकायदा डट कर इसका सामना करें, और जो सोशल हुकाम आते हैं बच्चों की देखभाल के लिए या बच्चों को उठवाने के लिए उनके साथ बाकायदा बहस में हिस्सा लें और आला हुकाम से रिजू करें कि क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों सलूक किया जा रहा है और इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी आपने जो है रोज़नामा इंफॉर्मेशन की मौजूदा सीरीज का जिक्र किया, और आपने फरमाया कि गैर मुल्कों की खिदमात के बारे में डेनिश अवाम को आगाह करना बहुत ज़रूरी है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी फिर इसी तरह के एक नए नए सर्वेज आ रहे हैं, एक नया सर्वे आया है ख़ासतौर पे जो डेनिश मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसने कहा है कि जी गैर मुल्की तो काम ही नहीं करते, ये जो है इनको चाहिए कि ये अपने तैयार होकर काम की मंडी में जाएं और जो नए जॉब्स हैं और उनको इस्तेमाल करें, नए प्रैक्टिस कराएं, ये करें। अब वो जब भी कोई अच्छी खबर आती है उसके साथ फौरन कोई मिनिस्ट्री की तरफ से एक और चीज़ पेश कर दी जाती है जिससे फिर वही हम एक कदम आगे और दो कदम पीछे वाली बात हो जाती है। तो ये कभी कहते हैं गैर मुल्की अब काम की मंडी में बिल्कुल ठीक ठाक उनकी परसेंटेज है, अब कुछ एक दो महीने के बाद कहते हैं नहीं नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है, इनको तालीम हासिल करना चाहिए। तो ये हकूमती जो शशोपंज में पड़ी हुई हुकूमत को ख़ुद भी पता नहीं कि वो क्या कहे, तो वो बस जो वो वाकई वो कह देते हैं, तो ये इसके बारे में क्या कहते हैं?
4: देखिए ये जिस सर्वे की या हुकूमती मौकफ की आप बात कर रहे हैं
2: जी,
4: इसको तैयार करने में वजारत रोजगार जो है हमारी आवास मिनिस्टेरियम उनके साथ साथ डेनिश पीपल्स पार्टी और डेनिश डेमोक्रेट्स जो थे वो भी शामिल थे। अब इन दो पार्टियों का हुकूमत के साथ मिलकर इस मौजू पर सर्वे करना या इस मौजू के हकायक जानने की कोशिश करना कि तारकिन वतन रोजगार की मंडी में क्यों नहीं आते या आते भी हैं कि नहीं आते, ये एक मेरी नज़र में अहमकाना इकदाम इसलिए दिखाई देता है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं ये गैर मुल्कियों के मुतालिक और खासतौर पर मुसलमानों के मुतालिक जो मौकफ रखती हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं।
2: Exactly.
4: और जब इस तरह के किसी सर्वे में इस तरह की किसी पार्टी को शामिल किया जाए तो यकीनन वो अपने मौकफ की हमायत में आदाद व शुमार इकट्ठे करने की कोशिश करेगी
2: और उसको मिसयूज भी कर सकते हैं आदाद व शुमार
4: और उसको वो उसका मकसद ही यही है कि इस तरह इस बात को उछाला जाए कि गैर मुल्की रोजगार की मंडी से बाहर है।
2: Exactly.
4: अब देखिए पिछले दिनों डेंसक इंडस्ट्री यानी डेनिश
2: इंडस्ट्रियों
4: की जो कौमी तंजीम है
2: जी जी।
4: उसके आदाद व शुमार आए हैं और उन्होंने हैरान कर दिया है कि किस तरह गैर मुल्की नौजवान जो है और लड़के और लड़कियाँ वो रोजगार की मंडी में आगे बढ़ रही हैं, पेशा वराना महरियत माहिर हैं और डेनमार्क के लिए एक पैदावार की हैसियत रखते हैं।
2: Exactly.
4: वो डेनमार्क के लिए कमाते हैं, टैक्स में इतना पैसा अदा करते हैं। डेनिश आदाद व शुमार का अदारा जो है उसके आप ताजा तरीन सर्वे देखिए कि कितने गैर मुल्कियों ने कितना टैक्स की मद में सरकार के खजाने में पैसा जमा करवाया है।
2: तो जैसे सब क्या हम कह सकते हैं कि डेनिश इंडस्ट्री जो पूरी सनतकारी की जो बड़ी सबसे बड़ी तंजीम है वो जो बातें कहती है उसमें ज़्यादा सदाकत है क्योंकि उनको तो पता है कि उनके पास कितने लोग काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे।
4: बिल्कुल आपने बजा कहा और न सिर्फ उसमें सदाकत है बल्कि वो क्योंकि जानते हैं कि उनके यहाँ किन किन शोबों में किन किन सनतों में कितने कितने गैर मुल्की जो हैं वो पेशा वराना खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात यही मैं सुनने वालों के लिए ये कर्ज करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों डेनमार्क ने एक फहरिस्त शाया की है कि जिसमें इनको 49 के करीब मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की अफराधी हुकूमत की जरूरत है। उसमें आप देखिए उसमें एक इनको हजाम जो है उनकी भी जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप गैर ममालिक में रहने वाले लोगों को ये कहकर मुतवज्जो करते हैं कि हमें इन शोबों में अफराजी कुवत की कमी है लेकिन आप साथ ये नहीं बताते कि जब वो लोग यहाँ आते हैं तो आपका अपना सरकारी रवैया और समाज का उनके साथ बर्ताव कैसा होता है। यहाँ जो एक आदमी आ जाता है, एक डॉक्टर आता है
2: जी।
4: उसको यहाँ आते हुए इस मुआशरे में अपने कदम जमाने के लिए किन मराहल से गुजरना पड़ता है।
2: बिल्कुल।
4: सबसे पहला मसला तो उसका रहायश का है
2: जी।
4: उसके बाद उसकी जुबान का मसला है। उसके बाद फिर जरूरी नहीं कि उसको रोजगार भी मिल जाए।
2: हाँ जी, काम की मंडी में बड़ा प्रॉब्लम है जी। हाँ।
4: काम की मंडी, हालांकि डेनमार्क को इस वक्त 375 के करीब डॉक्टर चाहिए और इतने डॉक्टर जो हैं, बाहर डॉक्टर जो हैं, मुख्तलिफ सर्जन जो हैं, वो मुहाजिरीन के पनाह के कैंपों में पड़े हुए हैं।
2: हाँ, और उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जी जी बिल्कुल,
4: उनको इस्तेमाल क्यों किया जाता। चाहे जितने जाए कि आप इंडिया पाकिस्तान से डॉक्टर बुलाएं, नर्स बुलाएं जी, और उनको यहाँ आकर ख्वार होना पड़े जी। आप मुझे ये बता सकते हैं बाकी साहब कि पाकिस्तान से आने वाला एक डॉक्टर जो है फर्ज कीजिए जिसे ना यहाँ की जुबान आती है ना वो यहाँ के मुआशरती आदाब से वाकफ है, वो यहाँ जब आता है तो सबसे पहले उसके लिए रहायश का मसला है। अगर वो कम से कम किसी कोई एक कमरा लेता है, किसी के साथ रहता है, तो इसको कम से कम 3,000 करोड़ जो है वो अदा करने पड़े।
2: 3,000 तो रसर भाई बहुत कम बता रहे हैं आप। अभी कोपेनहेगन में जो है एक कमरा स्टूडेंट 6,000 करोड़ का कमरा मिलता है वो भी।
4: और अगर वो डॉक्टर साहब ये 6,000 करोड़ यहाँ पर एक साल के लिए अदा करते रहे महीने के महीने, तो क्या वो अपना एक छोटा सा क्लिनिक पाकिस्तान में नहीं खोल सकते।
2: एग्जैक्टली,
4: वहाँ पर लोगों की खिदमत भी होगी और अपने घर में भी रहेंगे और यहाँ डेनमार्क में आप कुछ भी हो जाए आपको ये जो तुम और हम का फर्क है उसमें शुमार किया जाएगा।
2: अच्छा, एक चीज
4: अगर कहकर पुकारा जाए
2: जी, यहाँ पे एक चीज और मैं अर्ज कर दूँ, वो ये है कि अक्सर लोग जो यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान में ऑलरेडी बड़े अरसे से अस्पतालों में, क्लिनिक्स में उनका अपना बिजनेस होता है, वो छोड़ के आते हैं वहाँ पे। ये मुझे
4: उनका अपना मुकाम होता है।
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल,
4: यहाँ सूरज जो है वो उनकी आँच पे अकेले पे आ जाएगा और पैसे जो है वो ये होंगे और वो होंगे
2: और फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ
4: हमारी अपनी हिजरत की जो वजूहत थी वो भी कुछ कम दुखदे नहीं है।
2: नहीं जी जी,
4: लेकिन फिर वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से मुंह उठाकर यहाँ आने वाले लोग जो है उनको अपने इस रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। خاص طور پر پاکستان میں اس وقت جو موجود ہیں اور بات بول رہے ہیں, حکومت کر کچھ ان کو ملک میں رکھنے دے کے لیے کچھ
2: کوشش کر رہے ہیں,
4: ان کو اپنی ہی جدوجہد کے تحت, اپنی مدد آپ کے تحت وہاں اپنے آپ کو سمائے رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا, جو کہ اس عذاب سے بہت کم ہے جو انہیں یہاں آ کر بھگتنا پڑتا ہے.
2: بہت خوب. اچھا ایک اور چیز میں عرض کر دوں اپنے سامعین و ناظرین کو, اگر جو ہمارا پروگرام پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے, یورپ کے یورپ میں جو لوگ اردو بولتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں, اگر آپ کو ویزا مل بھی جاتا ہے تو پلیز کوشش کریں کہ آپ اکیلے آئیں, اپنی فیملی کو نہ پوری کو لے کے آئیں, کیونکہ ان کو جیسے ابھی نصر صاحب نے کہا ہے رہائش کی ضرورت ہے, کام کی ضرورت ہے, اور سیٹ ہوتے ہوتے چھ مہینے ایک سال لگ جاتا ہے. اکیلے آئیں, رہائش ڈھونڈنے, کام ڈھونڈنے, سیٹ ہو جائیں, پھر آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ لا سکتے ہیں.
4: یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. میں اس وقت تک پاکستان سے آئے ہوئے کچھ 5-6 ڈاکٹروں کو جانتا ہوں,
2: جی جی,
4: جنہوں نے بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اپنے اہل خانہ کو بھی یہاں بلا لیا.
2: بالکل.
4: اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ ان کے 2-3 بچے ہیں, ان کو اسکولوں میں جانے کا مسئلہ درپیش ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاندان جو 4 افراد پر مشتمل ہے, میاں بیوی اور 2 بچے, ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا اور اس رہائش کے لیے ایک خطیر رقم جو ہے وہ ہر ماہ کرائے کی صورت
2: میں. سر بھائی وہ تو 15-20 ہزار کرونے سے کم ملتی نہیں کہیں.
4: میں کہتا ہوں وہ بہت مشکل ہو.

0: अच्छा, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो एक और सर्वे आया है, उसमें ये कहा जाता है कि वो वालदैन जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं या उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं, उनके बच्चे अक्सर जो है वो पढ़ते भी बेहतर हैं और आगे आगे उनकी तरक्की भी बेहतर होती है। तो ये चीज़ तो गैर मुल्की पेरेंट्स में भी बहुत है, और क्या ये सर्वे जो है ये एक सही तरह सही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की तालीम में उनकी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और उनके बारे में जो है उनसे बातचीत करें तो उस वो बच्चों का मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो सकता है डेनमार्क में।
1: ये तो एक बिल्कुल कुदरती बात है कि अपने बच्चों के सिलसिले में परेशान रहने वाले और तवज्जो देने वाले वालदैन जो हैं उनके बच्चे बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि वो उनको कदम कदम पर बताते रहते हैं और उनके साथ रहते हैं।
0: जी,
1: तालीम के मैदान में कैसे जाना है या रोजगार के माहौल में कैसे कदम जमाने हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि क्या वालदैन ऐसा करते हैं?
0: एग्जैक्टली,
1: सवाल यह है
0: और करना चाहिए उनको। हाँ जी बिल्कुल।
1: क्या कभी उन्होंने अपने बच्चे को जब वो स्कूल से या बच्ची वापस आती है घर तो पूछा है कि आज स्कूल में कल दिन कैसा गुजरा?
0: जी जी जी हाँ।
1: या रोजगार से वापस आने वाला आदमी जो है वो बेचारा आते ही घर में ये तो नहीं कहता कि रोटी पकाई है? वो दोनों मिलकर आपस में कुछ बात कर सकते हैं कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरा, मेरा दिन कैसे गुजरा।
0: जी,
1: जहाँ तरक्की के कई मौके और हैं, मैं सोच रहा हूँ कि किसी और जगह भी साथ ट्राई करूँ। लेकिन जहाँ तक बच्चों की तालीम तरबियत का मामला है, इस सिलसिले में ये बात बिल्कुल जुदा है कि वो वालदैन जब अपने बच्चों की तालीम और उनके मुस्तकबिल के लिए परेशान रहते हैं या कुछ ऐसे मिले जुले ख्याल रखते हैं, जब वो अपने वालदैन बच्चों की तरफ तवज्जो देते हैं तो वो बच्चे यकीनन कामयाब रहते हैं और वो बहुत अच्छे नतीजे दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे खुद पाकिस्तानी बिरादरी में वो वालदैन जो बच्चों की तरफ ज्यादा रागब होते हैं, उनकी तालीम तरबियत के सिलसिले में बड़े एक्टिव होते हैं, उनके बच्चे कहाँ तक पहुंचे हुए? कल हम आपकी सोबत में जब हम गए हुए थे वहां पर मैंगो मेले में, आम के मेले में, तो आपने देखा कि हमारे कितने नौजवान जो हमसे मिले थे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपके सदस्य से मुझे भी कई नौजवानों से मिलने का मौका मिला। जी, वो कितने शानदार उर्दू पर काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल दुरुस्त।
1: और आपके बारे में वो बताते हुए कितने पुरजोश थे और उनको कितना इत्मीनान था कि वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं।
0: जैसे भाई, आपकी इजाज़त से मैं यही सवाल जो है रजा साहब से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे और आपके बच्चे तो वो तो बच्चों के बच्चे भी हैं। मैं रजा की फैमिली जो है ना अभी नौजवान है और रजा साहब के एक बेटा है 5 साल का। रजा, अभी जो हम मैं नसर भाई बात कर रहे थे कि वो पेरेंट्स, वो वालदैन जो अपने बच्चों की परवरिश में बहुत हिस्सा लेते हैं, उनके तालीम के बारे में जब बच्चे उनके स्कूल से आते हैं तो उनसे पूछ करते हैं, क्या ऐसे होता है पाकिस्तानी कम्युनिटी में? होना चाहिए, क्या आप क्या समझते हैं?
2: देखिए भाई साहब, मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों का ध्यान भी रखते हैं, उनकी परवरिश भी करते हैं। और देखें, हमारे बहुत से यहाँ पे ख़ासतौर पे हमारी जो बहनें बेटियाँ माएँ वो ऐसे ऐसे उहदों पे हैं, और हमारे जो भाई हैं दोस्त हैं वो भी इसी तरह काफ़ी आगे जो है हम जा चुके हैं। लेकिन माशरे में जो है वो आप अगर आप देखें तो जिसको कहते हैं ना कि ये एक इंसानी फितरत है। कुछ बच्चे जो हैं उनके माँ बाप उन पर तवज्जो भी देते होंगे, उनके पास पैसा भी होगा, वसाइल भी होंगे, लेकिन फिर भी वो जो है वो लाइन से जो है वो भटक जाते हैं। तो ये है कि
0: उसकी क्या वजह है
2: बच्चे साहब? उसमें शायद जो है कुछ घर की शायद जो कुताहियाँ हों वो हो सकती हैं, कुछ माशरे की जो कुताहियाँ। लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि उस्ताद का एहतराम वो यहाँ पे नहीं सिखाया जाता, उसके साथ माँ बाप जो हैं उनको बच्चों को डांटने का या उनसे उस तरह वो रवैया रखने का वो सख्ती नहीं कर सकते। तो यानी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो मिल के जो हैं वो करते हैं, और ख़ासतौर पे जो हमारे बच्चे जिन दोस्त जो उनके क्लास फेलो जो उनके दोस्त जो उनका माहौल जिस इलाके में हम रहते हैं उसका भी जो है वो काफ़ी असर पड़ता है।
0: जी जी जी जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। नसर भाई, एक और मसले पे मैं हम नज़र डालना चाहते हैं, वो ये है

0: पैसा जो है ना ये जाया गया, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब किया जा रहा है। तो अगर आखिर में हम कुछ पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें, बलूचिस्तान में काफ़ी अटैक होते हैं और बड़े ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से लोगों को मारा जा रहा है। अभी तकरीबन 50-60 लोगों पे BLA वालों ने अटैक किया, और उस मसले को हल करने के लिए हुकूमत जो है और फौज वो दहशतगर्दों को मार रही है, जो खा वो अफगानिस्तान में हो खा वो अपने बलूचिस्तान में हो। लेकिन मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि किसी न किसी तरीके से इस मसले को हल होना चाहिए। आप क्या समझते हैं
1: भाई साहब? बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की कि इनको बैठ के किसी तरीके से अपने जो मसाइल हैं, क्योंकि बलूचिस्तान भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है,
0: बिल्कुल है,
1: और अगर आप जो है वही सलूक करेंगे उनके साथ जो हमने बांग्लादेश के साथ किया था, तो ये मुल्क क्या? और फिर कहते हैं कि जी ये मुल्क रमजान में बना था और इसके कभी दो टोटे नहीं होंगे। दो टोटे तो 71 में हो चुके हैं, अब तो इसके खुदा ना खास्ता मजीद हो सकते हैं अगर हमने अभी भी जो है वो होश के नाखून ना लिए और ये बैठ के। और बशीर साहब, हमारे जो DGI SPR साहब हैं वही जो आज से बचपन से हम जो सुनते आए हैं TV पे, वो जो चलते थे कि जी हम दुश्मन को निस्ब नबूद कर देंगे, हम ये हो गए, और फिर कहते हैं कि जी दहशत गर्दों ने हमला किया, हमने उसको नाकाम बना दिया और उसमें हमारे जवान 9 जो है वो जवान शहीद हुए हैं। बादशाह साहब, अगर 9 जवान शहीद हो चुके हैं तो वो फिर आपने नाकाम किस तरह बना दी है? ठीक है, फिर कामयाब किसको कहेंगे आप?
0: देखिए, एक फौजी अफसर का अपने बैरक में या अपने ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बात होती है, और जो ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं वो और हैं। ग्राउंड पे तो हमारी फ़ौज के जवान होते हैं ना, या छोटे वाले अफसर होते हैं जिनकी वहाँ पे शहादतें होती हैं, तो सियासी मसाइल कभी भी ज़बरदस्ती आप हल नहीं कर सकते। अच्छा, एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान रशिया की डिस्कशन जारी है, वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से काबू किया जाए, और अगर रशिया इस मसले पे और चाइना रशिया अगर दबाव डाले तालिबान पे तो हो सकता है कि ये मसला जो है इसका भी एक हल निकाला जाए। क्योंकि देखिए, बलूचिस्तान में तो खैर आप कर सकते हैं क्योंकि वो आपका अपना है, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान में जाके आप रोज़ाना हमले करेंगे या जेट फाइटर से अटैक करेंगे तो वहाँ से भी जो है प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं।
1: भाई साहब, ये चंद हफ्ते पहले खबर आई थी कि अफ़गानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान पर हमला किया था ब्राइट ड्रोन्स, तो अब तो वो भी उनके पास भी वो चीज़ आ गई है।
0: रशिया ने उनको दिए है ना मिसाइल वगैरह, और उनका डिफेंस सिस्टम भी वो थोड़ा। फिर देखिए, पाकिस्तान के एयरफोर्स का अफगानिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता किसी तरीके से, लेकिन फिर भी जंग में जो आप पैसे खर्च करते हैं या जो वसाइल खर्च करते हैं वही वसाइल जो हैं वो आप आवाम पर खर्च करें। और मैं ये हिंदुस्तान को भी ये कहूँगा कि वो बजाय इसके कि पाकिस्तान को अपना दुश्मन करार दे के और अवाम 800 मिलियन लोगों को 5 किलो राशन देते हैं हुकूमत हिंदुस्तान की, वहाँ पे इतनी गुर्बत है, 40% लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है, तो अगर इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये सब लोग बैठ के बात करें और अवाम की बेहतरी के लिए मंसूबे बनाएँ और इतना असला नहीं खरीदें, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसको चाहिए कि वो भी थोड़े से अक्ल के नाखून लें।
1: बाशी साहब, नफरत जो है ना, हाँ, वो आपको इकतदार देती है, वो आपको ताकतवर बनाती है। ये जिस तरह हमें जो ये मतन बेचे जाते हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया कहता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ये मुसलमान, यानी वो नफरत में जो है वो खुद इतने ताकतवर हो जाते हैं और खुद बैठ के अय्याशियाँ करते हैं, घपले करते हैं। और पाकिस्तान को ले लें तो बाशी साहब, हमारे ये जो चंद जर्नैल जो बैठे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है, ये यही करते हैं, ये पैसा बटोरते हैं, लेकिन मुझे आज तक इनकी समझ नहीं आई कि अगर एक मुल्क अच्छे तरीके से चलेगा तो आप ज्यादा खा सकते हैं, बजाय आप उसको जो है वो कंगला कर देंगे तो खाएंगे क्या कहाँ से। तो ये है कि इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अवाम को आप कुछ देंगे, वहाँ पे रोजगार लगेगा तो आपका भी रोजगार जो है वो बढ़ेगा, आप डबल खा लें।
0: नहीं, उसके अलावा
1: उनको तो रोटी पानी
0: दें। देखिए, फौज रोटी पानी के लिए नहीं होती, फौज का मकसद ये होता है कि वो उसको जो है अवाम की फ़ौज है, अवाम में से वो लोग आते हैं